मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था

0: ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। हम प्रभु को यहाँ वहाँ मंदिरों में खोजते हैं, जबकि हम ध्यान दें तो प्रभु हमारे मन में ही विराजमान है। ईश्वर कण कण में है, हम सभी ईश्वर पर निर्भर हैं।

भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जीवन में हमें जो भी मिलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। हमारा मन प्रभु की साधना में लीन है। प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हम विपदाओं के अंधकार में हैं, हमें इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाइए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप पंडित जसराज, नरेंद्र चंचल, एमएस सुबुलक्ष्मी और अनुराधा पौडवाल के सुर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लाला लाजपत राय के विचार।
4: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृत के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की

0: दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणति का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के विचार विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कृषि हार्मोन्स क्यों और कितना जरूरी विषय पर डॉक्टर हरीश चंद से शैलेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत।

0: का हुए, कृषि हार्मोन्स का हुए, एक कैसे उपयोग कर सकते हुए किसान भाई?
1: किसान भाइयों, पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत जरूरी है हार्मोन्स का प्रयोग। यह हार्मोन्स आपके पौधों में वृद्धि देता है, जड़ों की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ देता है, बीजों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ देता है, आपके जो पौधों में फूल लग रहे हैं उनसे झड़ने से रोकता है, फलों को गिरने से बचाता है और कच्चे फलों को भी आपको पकाने में मदद करता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में हम किसान भाई समझें तो अगर वैज्ञानिक खेती करते हैं तो आजकल हार्मोन्स का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम समझिए कि हर फसल के बारे हार्मोन्स का प्रयोग उचित?
1: लगभग सभी फसलों के लिए हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है ऐसे बिना रिकमेंडेशन के, बिना संतुति के कोई भी हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने ये लाभकारी हैं उससे भी ज़्यादा हानि का पहुंचा सकते हैं आपके पौधों को, आपके फसलों पर दुष्प्रभाव आ सकता है।
0: जी जी,
1: इसलिए तो प्रयास करें।
0: कहा का मतलब यह है कि भैया वैज्ञानिक विशेषज्ञ के देख रेख में ही अगर प्रयोग करें।
1: जी
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इससे फायदा का बाटे का? हमारी कृषि लागत कम होता है, फसल का उत्पादन बढ़िया होता है, वातावरण हमारा ठीक रहा था, जगह कहा था ना आपकी पर्यावरण शुद्धता रहा था, माटी की संरचना बनी रहा था, कुछ लाभ है इसे?
1: किसान भाइयों, जैसे क्योंकि बहुत तरह के हार्मोन्स उपलब्ध हैं, जैसे ऑक्सिन है, उसमें ऑक्सिन में इंडोलेस्टिक एसिड है, 2,4-D है, या जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन का क्या काम है कि आपके बीजों को सुषुप्ता अवस्था को तोड़ देना है। जैसे आप बुआई कर रहे हैं, आपका अच्छा जर्मिनेशन हो या आपको जो है अच्छा फसल आपका हो, तो इसलिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। या जो है आपका जिब्रेलिन है, टमाटर की फसल है, उसमें फूल झड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जिब्रेलिन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से कई जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है, जैसे साइटोकाइनिन एक हार्मोन्स है जो आपके टिश्यू कल्चर द्वारा जो पौधे तैयार हो रहे हैं उसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो पौधों को वृद्धि के लिए, विकास के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ही बताऊं, जैसे आप बताते हैं अलग अलग अवस्था में हार्मोन्स का प्रयोग होता है अलग अलग फसल में।
1: जी,
0: कुछ में बुआई के साथ ही हुई क्या है, कुछ में खड़ी फसल के साथ ही हुई क्या?
1: जी, कुछ फसलों में जैसे बुआई के बीज उपचार के लिए, जैसे आपके मान लीजिए कि आलू की फसल है, अब आलू की फसल लेने जा रहे हैं तो जिब्रेलिन का 5% 5 PPM का घोल बना करके अगर उसको करेंगे तो उसकी सुषुप्ता अवस्था टूट जाएगी और जल्दी जो है वो पौधा जर्मिनेट हो जाएगा, जिससे फसल आपकी अच्छी जमा होगा। तो इसके प्रयोग में आपको विशेष सावधानी बरतना है। ये कई प्रकार के जैसे आपके पाउडर फॉर्म में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको गूटी बांधना है, कलम बांधना है, तो उसमें कई प्रकार के जैसे आपके इंडोल ब्यूटारिक एसिड है सेरेडिक पाउडर में मिला करके, जब आप कटिंग करते हैं तो वहाँ पे कटिंग के आसपास के एरिया को लगा दिया जाता है, जिससे रूट डेवलपमेंट तुरंत शुरू हो जाता है, जिससे वो पौधे को जो है तुरंत जो है पिल्ला निकलने लगते हैं, तो ये हार्मोन्स उनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जैसे आपके मान लीजिए कि आपको किस रूप में प्रयोग करना है, तो पाउडर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, द्रव के रूप में भी प्रयोग करना है, जैसे आपकी खड़ी फसल है, बैंगन है, टमाटर है, या जो है पपीते की खेती है, तो इन सारे खेतों में जो है हार्मोन्स का प्रयोग करके आप उनके फलों को संख्या को बढ़ा सकते हैं, फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, मादा फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, तो हार्मोन्स का प्रयोग करके आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ही जाने के बाद, इससे कृषि लागत में, खेती की लागत में कितना फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल, ये बात आपका बहुत ही अच्छा है सवाल कि किसान भाइयों, जैसे क्या है कि आप जब फसल कोई उगाते हैं तो उसमें लागत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो लागत में क्या है कि आपकी फसल जो आप जैसे हार्मोन्स का प्रयोग करेंगे उससे क्या होगा कि आपकी लागत, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फूलों की संख्या बढ़ेगी, फलों की संख्या बढ़ेगी, जब उसमें दानों की संख्या बढ़ जाएगी, जब फूलों की संख्या बढ़ेगी, दानों की संख्या बढ़ेगी, मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा।
0: और मतलब अगर लागत अगर बढ़त बा तो उत्पादन भी बढ़त बाटे,
1: इससे विशेष लागत नहीं आएगी, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है।
0: अच्छा।
1: और इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में हम प्रयोग करते हैं, इसमें जो है 1 PPM से लेकर के 1000 PPM 2000 PPM तक इसका घोल का प्रयोग करते हैं।
0: मतलब तो 1 PPM से लेकर 1000-2000 PPM तक जी घोल का प्रयोग होता है।
1: और इसको 1 PPM बनाने के लिए आपको जो है 1 मिलीग्राम जो है
0: 1 मिलीग्राम
1: लेकर के 1 लीटर पानी

डॉक्टर हरिचंद जी, आप कॉर्डेट फूलपुर इलाहाबाद में वैज्ञानिक हैं, तो आज हम आपसे ये जानना चाहब कि भाई वैज्ञानिक खेती के बारे, वैज्ञानिक विकास के बारे, एक वैज्ञानिक चिंतन और प्रयोग का भी जरूरत पड़त है। तो ऐसा जो खेती बाड़ी में, कृषि में हार्मोन्स का प्रयोग हो रहा है या एक आप लोग संस्तुति कर रहा है, तो किसान चूँकि भैया बड़ा पारंपरिक हो तो प्रयोग धर्मी कम हो, तो मूल जब ओका पारंपरिकता से और प्रयोग धर्मता की तरफ ले जावा जाता, ओकरे बीच में कतहुन कतहुन सफलता खड़ी हो तो विकास खड़ा हो, तो ये हार्मोन्स

0: में घोलना है, और घोल करके फिर उस हिसाब से जितने रिकमेंड जो संतुति रहे उस हिसाब से आप जो है उस उतना पीपीएम का बना लें, फिर उसका छिड़काव करें।
1: भाई खेत के रकबों पर निर्भर करता है, खेत कितना बड़ा बाटे, कितनी बड़ी फसल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एकरे प्रयोग में सावधानी का बरतई का है, कहे आप बार बार कहता है कि भाई ऐसे अपने से ना प्रयोग करे, कहे कि पूरी जानकारी हो, वैज्ञानिक जानकारी हो, तब एकर कृषि हार्मोन्स का प्रयोग करें, ना नुकसान भी उसका था।
0: हार्मोन्स का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। एक पीपीएम बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि 1 मिलीग्राम आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है, इसको 1 लीटर पानी में घोल लें, उसके बाद जो है जितना मात्रा हो पहले हार्मोन्स को, पहले ये पानी में घुलने में थोड़ा दिक्कत होता है तो एल्कोहल आता है उसमें घोल करके फिर उसको डाइल्यूट कर लें, फिर उसको बना लें। इसके बाद जो है फलों एवं सब्जियों पर अलग अलग मात्रा होती है, उसको निर्धारित मात्रा में ही हार्मोन्स का प्रयोग करें। इसके अलावा हार्मोन्स का छिड़काव दोपहर में ना करें।
1: अच्छा।
0: क्योंकि दोपहर में करने से क्या है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और कल्लों जड़ों के शीघ्र विकास के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल एस्टिक एसिड रसायन को साधारण पाउडर के साथ मिला करके ही प्रयोग करें, सीधा प्रयोग ना करें।
1: मतलब सवेरे करें या शाम की करें के प्रयोग,
0: जी
1: दोपहर हम ना करें।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ जैसे फल है या सब्जी है पर अगर हार्मोन्स का प्रयोग भ तो क्या तुरंत सब्जी या फल का तोड़ा जाए इसका, बाजार में बेचा जाए इसका, या कुछ दिन रुक करके तब कैसे क्या करें कर?
0: इसके फलों को जब आप मेच्योर फलों में नहीं, जब फल आपके फूल अवस्था हो
1: जी
0: उस समय प्रयोग करना चाहिए हार्मोन्स का,
1: हुँ.
0: या फल जब आपके छोटे अवस्था में उस समय करना चाहिए, तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी मात्रा बहुत कम होती है जिससे इससे दुष्प्रभाव नहीं आते हैं। लेकिन कुछ फसलों में कितनी मात्रा में हार्मोन्स डालना है इसका रिकमेंडेशन है, उसकी संतुति है, उस अनुसार करना चाहिए। जैसे आम में गुच्छा विकार के समस्या रोकने के लिए NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड को 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़काव करें। इसी प्रकार नींबू वर्गीय जो फल हैं आपके अगर झड़ रहे हैं उसमें जो है आपको 2,4-D 10 मिली लीटर प्रति ग्राम जो है प्रति लीटर पानी में घोल बना लें, उसके बाद जो है उसको छिड़काव करें, तो जो फलों में नींबू में फल गिरने की समस्या है वो दूर हो सकती है।
1: मतलब कहा कि मतलब यह है कि जब फूल लगत हुए शुरुआती अवस्था हुए
0: उसी समय हार्मोन्स का प्रयोग करें तो अच्छे रिजल्ट आते हैं,
1: रिजल्ट भी अच्छा है भाई, और खासतौर पर नुकसान भी ना हो होकर।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कृषि में या फसल में का प्रयोग की जा खेत में कहूँ, ऐसा तो ना है कि माटी के ऊपर कोनो दुष्प्रभाव पड़े या फसल के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े?
0: नहीं नहीं किसान भाइयों, इसका मिट्टी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ना कोई ऐसा इसका रासायनिक प्रभाव मिट्टी पे आपके पड़ता है कि जिससे आपके फसलों में की जो लाभदायक जीवाणु हैं या उनकी जो उर्वरता क्षमता है उसमें किसी प्रकार का प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता कि जिससे आपकी हानि हो।
1: डॉक्टर हरिचंद जी, आप बहुत बढ़िया जानकारी दें। अगर हमें किसान भाई हरे वैज्ञानिक तरीके से कृषि में कृषि हार्मोन्स का प्रयोग करिए तो मधुराना है भाई कि उनका उत्पादन बढ़े, बढ़िया लाभ हो। आप बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि हार्मोन्स क्यों और कितने ज़रूरी, इस विषय पर डॉक्टर हरिश्चंद से शैलेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव।
1: नमस्कार। जब भी हमारी आंखों में कोई परेशानी होती है तो हम अपनी आंखों की जांच के लिए किसी नेत्र चिकित्सक या नेत्र परीक्षक के पास जाते हैं, और जब हमें चश्मा लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे चेहरे पर कौन सा चश्मा अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चश्मा बनवा तो लेते हैं,

0: पर वो हम उसे केवल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे चेहरे पे अच्छा नहीं लग रहा है। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चश्मा किस तरह का होना चाहिए और वो कैसा आप लें तो आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा। याद कीजिए पहले का दौर, जब चश्मा मोटे मोटे काले काले रूखे रूखे हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। आज चश्मे में कई तकनीक आ चुकी है, चश्मा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हल्का हो चुका है, इसके अलावा उसकी डिज़ाइन में भी बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत चश्मे के चयन की वजह से हम परेशान भी होते हैं, हमें तकलीफ भी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसा चश्मा लें कि वो आपके चेहरे को न केवल आकर्षक बनाए बल्कि आराम का एहसास भी कराए। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक फ्रेम जो किसी दूसरे के चेहरे पर अच्छा लग रहा हो वो कोई आवश्यक नहीं है कि आपके चेहरे पर भी अच्छा लगे, इसलिए चश्मे के चयन में विशेष सावधानी बरतें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से चेहरे पर कैसा चश्मा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चौकोर चेहरे की। ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें चेहरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। ऐसे चेहरे पर आप चौकोर फ्रेम लगा सकते हैं। इसके अलावा वेफेयरर डिज़ाइन या पेंटो फ्रेम जब आप लगाएंगे तो आपके चेहरे की सुंदरता और निखर कर सामने आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि चौड़े चेहरे पे बहुत अधिक छोटा फ्रेम आप ना लगाएं, वो आपके चेहरे पर ख़राब लगेगा। इसी का अब एक दूसरा हिस्सा आता है, गोल चेहरा। गोल चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसमें चेहरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है। ऐसे चेहरे वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें फ्रेम के चयन पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा फ्रेम लेंगे तो इसमें आपका पूरा चेहरा चश्मे के पीछे छिप जाएगा। तो आप ना तो बड़ा लें और ना ही छोटा चश्मा लें। अगर आप छोटा चश्मा लेते हैं तो उनमें से आप चौकोर लगा सकते हैं, कैट आई के फ्रेम लगा सकते हैं जो कि रिमलेस और सुप्रा भी आप चयन कर सकते हैं। आप गोल फ्रेम बिल्कुल ना लें क्योंकि इसमें आपका चेहरा ढक जाएगा और आपकी आईब्रो और आपकी लीड दोनों ही दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से यह आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम अंडाकार चेहरा। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाना वाला चेहरा है। इसमें चेहरा बिल्कुल अंडाकार होता है और इसमें हम फ्रेम अगर चयन करते हैं तो इसमें ना तो हम गोल लें ना तो कैटाई लें। चौकोर फ्रेम इस तरह के फ्रेम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। आप अगर चौकोर लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक बड़ा फ्रेम ना लें। अगर आप ज़्यादा बड़ा फ्रेम लेंगे तो वो भी आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम दिल के आकार का चेहरा। ये एक ऐसा चेहरा होता है जिसमें माथा चौड़ा और ठुड्डी छोटी होती है। इस चेहरे पे आप चौकोर फ्रेम लगा सकते हैं, हेक्सागोनल फ्रेम यानी जिसमें कई कोन होते हैं, उस तरह के फ्रेम भी आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा। इसके अलावा अब हम आते हैं, इसी में एक और फ्रेम आता है जो कि अर्धचंद्राकार होता है। इस तरह के फ्रेम भी अगर आप लेते हैं तो ये फ्रेम आपके व्यक्तित्व को और उभारेगा, आप और भी अच्छे लगेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और कड़ी आती है, सब बच्चों का। बच्चों को फ्रेम पसंद कराते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की नाक और स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को आप ना तो बहुत अधिक बड़ा फ्रेम दिलाएं ना तो बहुत छोटा फ्रेम दिलाएं। अगर फ्रेम बहुत ही बड़ा होगा तो बच्चे को तकलीफ होगी, और अगर छोटा है तो उसके स्किन और कान के पीछे गड्ढे पड़ेंगे और जिससे बच्चे को तकलीफ होगी। अब आते हैं हम बुज़ुर्गों में। बुज़ुर्गों के फ्रेम में भी चयन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप इसमें भी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेम ना छोटा लें, बल्कि वो फ्रेम इनको चयन कराएं जो कि सुविधाजनक हो।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित

होने वाले शेष कार्यक्रमों की। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, दिन में 12:15 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर तरुण नंदी के स्वर में भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी, जिसमें चर्चा का विषय होगा गर्मी की छुट्टियों में सीखने और संवरने का सुनहरा अवसर। मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में सुनिएगा बुके मेकिंग, सेहत ज्ञान में मोटा अनाज सेहत के लिए है खास। दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे शोभा लाल, प्रियंका चौहान और ब्रिजभान यादव और साथी। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम सुनिएगा, वाचन स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम, फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 9:00, दिन में 11:30 पर शाम 5:00 और रात 10:00। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

युद्ध समाप्ति पर विभीषण का राजतिलक हो चुका है। श्रीराम ने वानर भालुओं को साधुवाद दिया, कहा, तुम्हारे ही बल पर रावण जैसे प्रबल शत्रु का वध हुआ और विभीषण ने लंका का राज्य पाया। वानर भालू ऐसा वचन सुन कृत कृत्य हो गए। जनक नंदिनी का कुशल समाचार ले आने का प्रभु का आदेश पाकर हनुमान एक बार फिर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। उन्हें रावण तथा अन्य राक्षसों के वध का समाचार सुनाते हैं। हनुमान को आशीष कर सीता जी स्वामी के दर्शनों के लिए अपनी आकुलता प्रकट करते हैं।

कहती हैं, अब कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे प्रभु के दर्शन अविलंब प्राप्त हों। वापस लौटकर हनुमान ने श्रीराम लक्ष्मण को जनक नंदिनी का कुशल समाचार सुनाया। लंकापति विभीषण तथा अंगद को आदेश मिला कि हनुमान के साथ जाकर वे शीघ्र सीता को सादर लिवा लावें। उधर राक्षसियों ने सीता का अद्भुत श्रृंगार किया, विभीषण द्वारा प्राप्त वस्त्र आभूषणों से उन्हें सजाया और सुंदर पालकी में बिठाया। किंतु श्रीराम की आज्ञा है कि जनक नंदिनी पांव पैदल चलकर आवे ताकि वानर सेना माता को भली भांति देख सके।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए काजल फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए गोपी फिल्म का ये भजन मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गोपी फिल्म का ये भजन मोहम्मद रफी की आवाज में। और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी

0: 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और

0: संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, राग है नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन राग था नट भैरव। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आइए सुनते हैं देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। वहीं तमिलनाडु

0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8

0: भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक MLA एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में TVK के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल

0: दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा N. रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी।

0: कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सोलाना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज़्म व ज़ब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस हद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला ने वज़ीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आला, वज़ीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर ज़रूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने PNG, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वज़ीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वज़ीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने PNB मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर ख़ास तौर से जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़रा, MP, MLA और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वज़ीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी वज़ीरों, अरकान असेंबली अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनज़र लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने CBI से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट UG 2026

0: पुलिस के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार GDP के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए GDP के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले ये तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमज़ोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर

0: के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलहा, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा ज़ेरे गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफ़ायत शेयरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार आपको पढ़कर सुना रहे हैं। लिखती हैं, शिकायतें तब भी खामोश हो जाती हैं जब कोई अपना होकर भी अपना नहीं रहता। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक ये हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। नीरा त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही अच्छा और प्यारा सुविचार भेजा है और आपने हमें नमस्कार भेजा है, आपको भी बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आते हैं अपने विषय पर। सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। पृथ्वी पर हमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी मिलते हैं जो हमारे प्राकृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा की दूसरी ओर हम दुखी भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पशु पक्षी की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। श्रोताओं, जिस तरह हमें जल, भोजन और हवा की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमारे जीवन में पशु पक्षी का भी महत्व है। हम बात कर रहे हैं विलुप्त होते पशु पक्षी की, यानी वे प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर बहुत ही कम दिखाई पड़ती हैं। वन्य जीवों के विलुप्त होने के बावजूद मानव अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं। विभिन्न पक्षियों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहे हैं। पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। आधुनिक समय में पशु पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसका कारण मानव की गतिविधियां हैं। भारत में देखी जाने वाली पक्षियों की 11,000 प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा 2015 के लिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया। संकटग्रस्त पक्षियों की सूची में सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध, वन उल्लू, सफ़ेद पीठ वाला बगुला, डोडो, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, कस्तूरी मृग आदि शामिल हैं।

0: बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: श्रोताओं, ये चिड़िया और ये गौरैया जो कभी हमारे आंगन की शान हुआ करते थे, अब ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये सब हम अपने बच्चों को वास्तव में तो दिखा नहीं सकते, इनको हम इन चिड़ियों की कहानी और गौरैया की कहानी तो हम बच्चों को किताबों के माध्यम से ही दिखा और सुना पाएंगे। इन पक्षियों की आबादी में गिरावट के पीछे मुख्य कारण आवास की हानि, संशोधन विखंडन और पर्यावरण प्रदूषण, अवैध शिकार हैं। पक्षी विलुप्त एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान हमारी प्राकृतिक पेयजल और खाद्य सुरक्षा में होता है। पक्षियों को बीज बोने, उगाने, फैलाने का कार्य मिलता है, जिससे वनस्पतियों का प्रजनन होता है। इसके अलावा पक्षी भी कीट नियंत्रण करने में मदद करते हैं, जो हमारी खेती और फसलों को सुरक्षित रखता है। पक्षियों को बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमें अपने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भूमिका निभानी होगी। अपनी जीवन शैली में सतत वन्य जीवों के लिए स्थान छोड़ना होगा। हम सभी का कर्तव्य है कि पक्षियों को बचाएं। पक्षियों से हम मनुष्यों एवं जानवरों को कई तरह के फायदे हैं। इनको बचाना बेहद ज़रूरी है। इनको बचाएंगे तभी हम वातावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। पेड़ पौधों की कटाई रोकनी होगी। पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का काम करते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाकर हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं ये पशु पक्षी। हमें इन्हें बचाने का हर संभव प्रयास करना होगा।

पशु पक्षी बेजुबान हैं, पर वो भी इस धरती की संतान हैं। इन्हें विलुप्त होने से बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर गूंजती रही कंक्रीट की आवाज़ तो खामोश हो जाएगी गौरैया की आवाज़। प्रकृति का संतुलन है पशु पक्षी, इन्हें खोकर हम अपना ही विनाश बुलाएंगे। बढ़ते शहरीकरण की वेदी पर हम बेजुबानों का आशियाना कुर्बान कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण केवल शौक नहीं, यह मानवता के अस्तित्व की ज़रूरत है। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम पशु पक्षियों को नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पोस्ट के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने सुविचार। आपका नाम शामिल करेंगे हम कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में सुबह 8:45 पर। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। संगीत दिया है रवि ने और रचना है हसन कमाल की।
3: अभी अलविदा मत कहो।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए तमन्ना फिल्म का ये गीत। कुमार सानू की आवाज़ में संगीत दिया है अनु मलिक ने और रचना है कैफी आज़मी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तमन्ना फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गाँव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
2: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी, तब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे।

0: एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
1: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया
2: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। वार्ड पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है न्यूमेटर के द्वारा किया जाएगा, पैनल के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको देना है।
1: तकनीकी सहयोग जोहत शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कि कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
3: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
4: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस करण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी

0: ये अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश का अंक।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। सामाइन, आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, और इसके बाद कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं डॉक्टर सरफराज नवाज। सामाइन, आज उर्दू के मारूफ शायर और सहाफी मौलाना हसरत मोहानी का यौम वफात है। समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर बाहमी इत्तेहाद के नकीब हसरत मोहानी। उर्दू शायरी और उर्दू गजल को नई जहत से रोशनास कराने वाले और अजीम मुजाहिद आजादी मारूफ शायर मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश 1 जनवरी सन 1875 को जिला उन्नाव के मोहान में हुई थी। उनका असल नाम फैजुल हसन था और हसरत उनका तखल्लुस था। मोहान में पैदा होने की निस्बत से वो हसरत मोहानी हो गए। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आजादी होने के साथ साथ बुलंद पाया सहाफी भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम के साथ मौलाना हसरत मोहानी की सहाफत भी काबिल कद्र थी। मौलाना हसरत मोहानी ने जमाने तालिब इल्मी में ही सहाफत के मैदान में कदम रखा। उन्होंने सहाफत को अपने अफकारों नजरियात की तर्जुमानी और हुसूल मकसद का वसीला बनाया। अरसाए सहाफत में उनके लाफानी नकूश जरायद उर्दू मुअल्ला और तस्करतुश शोरा में नजर आते हैं। सन 1903 में उन्होंने उर्दू मुअल्ला जारी किया जो दुनियाए सहाफत में इनफरादी और मुमताज मकाम रखता था। बकौल मजनू गोरखपुरी के, अगर हसरत न होते तो आज न जाने कितने उर्दू शोरा के कारनामे तल्फ होकर रह जाते और हम उनके नाम तक से बेखबर रहते। मौलाना हसरत मोहानी को कृष्ण जी से वालेहाना अकीदत थी। हसरत फरमाते हैं, इल्मो हिकमत का जिन्हें शौक हो आए न इधर, कुछ नहीं फलसफे इश्क में हैरत के सिवा। हसरत मोहानी का नजरिये इश्क सूफिया इकराम से मुतासिर है और बहुत वाजा भी है। वो फरमाते हैं, मेरा ईमान अजब क्या जो ईमाने तसव्वुफ, तसव्वुफ जाने मजहब है, आशिकी जाने तसव्वुफ। मौलाना हसरत मोहानी कृष्ण जी की मोहब्बत से इस तरह लबरेज हैं कि कृष्ण जी के इश्क से उनका दिल मुनव्वर हो गया। अपने इन्हीं जज्बात का इजहार उन्होंने अपनी एक गजल में किया है। इरफाने इश्क नाम है तेरे मकाम का, हामिल हूँ किसके नगमे मैं के पयाम का,

0: कर दिए थे जिनको गजल से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और इस किस्म के मजामीन मीरातुल गैब में कसरत से पाए जाते हैं। जैसे एकदम हुक्म खुदा मुझको फरामोश नहीं, दिल पे लिखे हैं समावी हैं जो दफ्तर चारों, क्या हुआ चार अनासिर जो परेशान हुए आज, दम में हो जाएंगे एक जा दमे महशर चारों, बतने मादर बगल गोर मकान बागे बहिश, अपने बंदों को खुदा ने ये दिए घर चारों, नसीब हो कि ना हो सुबह देखना गाफिल, ख्याल मौत का जम है वक्त ख्वाब रहे, वजीरों को सनद शाह का है फर्ज एजाज, नबी के हाथ में अल्लाह की किताब रहे, गैरों को फाड़ खाए सगे यार तो कहूं, ऐ शेर वाह तू ही तो शेरों का शेर है, कसूर नफ्स लाई से खुदा रहा नाराज, गुनाह गैर पे हम मुर्दे इताब रहे। इसके अलावा सनम खान इश्क के नाम से दो दीवान नूर तजल्ली और अब्र करम दो मतनविया, कई मुसद्दस कसाइद और वासोख्त छोड़े, और अमीरुल लुगात तो वाकई अजीम शाहकार है। अल मुख्तसर ये कि अमीर मिनाई ने उर्दू शेर अदब की बेलौथ व काबिल कदर खिदमत अंजाम दी है। अमीर मिनाई को लखनऊ के ऐश परिस्ताना माहौल ने इनकी तबीयत पर गहरा नक्श छोड़ा था। कैसर बाग के ऐशो इशरत सैर व तफरीह व तमाशे लखनऊ छोड़ने के बरसों बाद तक इनको याद आते रहे। मसलन फरमाते हैं, अमीर अफसुरदा होकर गुंचे दिल सूख जाता है, वो मेले हमको कैसर बाग के जब याद आते हैं। अमीर मिनाई ने मुख्तलिफ नौ असनाफ सुखन में तब आजमाई की, लेकिन इनका असल मैदान गजल ही था। अमीर की शायरी में हुस्न इश्क के जज्बात का लखनऊ की इल्मी जबान में बड़ी खूबी से बयान हुआ है। इनके कलाम में तखयल की गहराई के साथ रंगीनी और नुदरत भी है। इसके अलावा हुस्न इश्क की छेड़छाड़ और आशवा तराजियां भी हैं। इनका इब्तदाई कलाम नासिख के रंग में है, लेकिन आगे चलकर दिल्ली की सादगी सफाई सलासत व रवानी रंगीनी व रानाई रियायत लफ्जी तशबीहात व इस्तियारात और बेतकल्लुफी का भरपूर अक्स भी नजर आता है। आइए जरा नमूने कलाम पर तवज्जो फरमाते हैं। जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का, अंगूर में थी ये मैं पानी की चार बूंदें, जिस दिन से खींच गई है तलवार हो गई है, उम्र बरको शरार है दुनिया कितनी नापायदार है दुनिया, अमीर जमा है अहबाब हाले दिल कहले, फिर इल्तिफाते दिल दोस्तान रहे न रहे। सनम खान इश्क के अखीर में गौहरे इंतखाब और जवाहरे इंतखाब के नाम से दो जमीमें शामिल किए, जिनकी निस्बत उनका दावा है कि वो मीर और दर्द के रंग में कहे गए।
1: अमीर मीनाई की गजलिया शायरी ये मकाला पेश कर रहे थे डॉक्टर शरीफुद्दीन, और अब हम सुनवा रहे हैं आपको डॉक्टर सरफराज नवाज से उनका कलाम।
2: उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया, धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। एक मतलब एक शेर और देखें कि लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया, लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया कि अश्क हार गए हार कर सवाल किया, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया। एक मतला और एक शेर समात फरमाए कि बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है,

मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। अब एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए। मतला यूं अर्ज किया है कि पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं। तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो दें, यहां एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, देखें कि वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं। मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं। तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं। ये गजल के चंद अशआर और समाअत फरमाए। मतला देखें कि नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला। और ये शेर देखे के बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासे उम्मीद, बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासे उम्मीद, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला। निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला। हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो के, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, किया है तरके तअल्लुक मलाल दे मौला, किया है तरके तअल्लुक मलाल दे मौला। उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला। और एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमा लें। मतला यूं अर्ज किया है कि चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं। और कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जबा मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं। हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते।

0: फिरते हुए, हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते फिरते हुए, हम ही हैं जान जो दिल में कयाम करते हैं, हम ही हैं जान जो दिल में कयाम करते हैं।
1: कलामी शायर के तहत ये थे डॉक्टर सरफराज नवाज। सामेन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। मुआविन तमाय मोहम्मद फारूक जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं तरुण नंदी। आइए सुनते हैं ये भजन।

अभी आपने सुना ये गीत, और अब सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कलाकार थे तरुण नंदी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35

0: प्रतिशत आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। जी हाँ, वो आवाज़ जो रेडियो के द्वारा आप तक पहुँचती है और वो आवाज़ जो आपको खुश कर देती है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात करेंगे आज डिजिटल लर्निंग व बनाम पारंपरिक पढ़ाई की, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये गीत। मन का रेडियो बजने लगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज हम बात करेंगे डिजिटल लर्निंग बनाम पारंपरिक पढ़ाई की। डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होती है। विद्यार्थी अपनी सुविधा, समय और स्थान के अनुसार सीख सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को जीवन शैली में आसानी से शामिल करने में मदद करता है। पारंपरिक शिक्षा में आमतौर पर आमने सामने सूचना को आदान प्रदान करना होता है, जो किसी भौतिक स्थान पर होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज। कक्षा शिक्षा में एक शिक्षक और छात्र होते हैं। यह शिक्षा सामाजिक मेलजोल, व्याख्यान के नोट्स बनाने, असाइनमेंट प्राप्त करने और परीक्षा देने जैसी गतिविधियों से युक्त होती है। पारंपरिक शिक्षा को शिक्षक निर्देशित व्याख्यान आधारित शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं और छात्र उनकी बात को समझते और मानते भी हैं।

ऑनलाइन शिक्षा की तुलना में पारंपरिक शिक्षा गुणात्मक लाभ प्रदान करने वाली होती है और यह लाभ विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती है जिनकी एकाग्रता अवधि कम होती है और वे आभासी कक्षा में घंटों तक नहीं बिता सकते। ऑनलाइन शिक्षा, जिसे अक्सर दूरस्थ शिक्षा या ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट के माध्यम से दी जाती है या एक व्यापक शब्द है जो किसी भी प्रकार की ऐसी शिक्षा को दर्शाता है जो पारंपरिक कक्षा में होने के बजाय दूरस्थ रूप से होती है। ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट के से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि का उपयोग करके कौशल और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

पारंपरिक शिक्षा पर डिजिटल शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम पारंपरिक शिक्षा ही की प्रक्रिया सरल व प्रभावशाली होती है। हम देखते हैं कि एक पारंपरिक शिक्षण मॉडल में छात्र लंबे व्याख्यान सुनते हैं और नोट्स लेते हैं और आमतौर पर रटने का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण न तो कक्षा में सक्रियता प्रदान करते हैं तथा न ही सक्रिय अंतःक्रिया के लिए बहुत कम या कोई स्थान होता है छोड़ता है। किंतु ऑनलाइन शिक्षा जो कि डिजिटल शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है, कक्षा की गतिविधियों और सहकर्मियों से सहकर्मी व शिक्षकों के साथ संबंध स्थापित करने व सहयोग में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इतना ही नहीं, डिजिटलकरण का उपयोग शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यवसाय प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। COVID-19 ने आजीविका के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण सभी मॉल, सुपरमार्केट, कार्यालय और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई थी। छात्र पारंपरिक कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सके जिसका उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। परंपरागत और ऑनलाइन दोनों प्रकार की शिक्षा के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हालांकि कई संस्थानों में आज भी कक्षा में ही पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा धीरे धीरे परंपरागत शिक्षा की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रही है। डिजिटल प्रकाशन क्षेत्र में भी बढ़ती मांग के साथ साथ विकास हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहभागिता, सुलभता और सुविधा सीखने को अधिक रोचक और प्रेरक बनाती है।

अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में डिजिटल लर्निंग बनाम पारंपरिक पढ़ाई। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है।

0: लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।

0: तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
4: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
6: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
6: नहीं समझे?
5: नहीं।
6: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
4: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
4: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
4: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
4: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
4: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
4: नहीं समझी?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: You heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुका रुका, जाओ।

0: जाओ। रुक अब।
1: कौन हो तुम?
2: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है, अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
1: क्या सूचना?
2: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
1: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
2: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
3: हाँ नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
2: सर हम एक चरवाया है।
3: आगे बताओ।
2: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
3: क्या देखा तुमने?
2: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
3: क्या?
2: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ
3: कितने लोग रहे होंगे?
2: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
3: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने, हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
2: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
4: तो साथियों इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
5: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
4: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
5: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
4: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
5: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
4: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
5: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।

0: हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
0: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
2: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
0: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
0: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
3: उधर से।
0: हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
0: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
0: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
0: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
4: यस सर।
0: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
1: जी जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर, जी सर।
0: कोई शक?
1: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
4: यस सर।
1: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
5: धीमे बोलो, धीमे।
1: जी,
5: उन्हें पता ना चल जाए।
1: जी सर।
5: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
1: जी।
5: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
1: ठीक है सर।
5: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
1: जी सर। जी सर।
5: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
5: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे,
1: धीरे, धीरे।
5: तबे बहुत। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं। कोई भी उठकर नहीं जाएगा, सब रहेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: हाँ सर।
5: एवरीबॉडी रेडी?
1: यस सर।
5: यस सर। अब हथगोला फेंको।
0: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को

0: आपके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में 11 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार का, और आज की कलाकार हैं आलिया भट्ट। एक जाना पहचाना सा नाम जिनसे आप सब परिचित हैं, लेकिन वो बातें जो कुछ ख़ास हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुकेश भट्ट और सोनी राजदान माता पिता के रूप में मुंबई में हुआ था। इनके पिता गुजराती और माँ कश्मीरी पंडित, ये ब्रिटिश जर्मन वंश से संबंधित हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो महेश भट्ट के रूप में जहाँ एक फिल्म मेकर पिता मिला और माता के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला, तो दो महान वंशों के रक्त से सिंचित आलिया भट्ट, जिनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू आप सोचते होंगे, फिल्मी घराने में पैदा हो जाना ही सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है, ऐसा नहीं है। खेती के लिए ज़मीन तो मिल जाती है, लेकिन उगाना क्या है, सिंचाई कैसे करनी है, ये तो खुद किसान को तय करना पड़ता है। वैसे ही पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि प्रतिभा किस दिशा में जाना चाहती है और वो अपने आप को क्या साबित करना चाहती है, क्या बनाना चाहती है। तो यही हाल आलिया भट्ट का भी था। बचपन से जो पारिवारिक पृष्ठभूमि इनको मिली, फिल्मों में इनका प्रवेश तो हो गया था एक बाल कलाकार के रूप में, लेकिन इनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में आई थी और इससे इनको पहचान मिली। तो कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की कलाकार हैं आलिया भट्ट, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट को एक पहचान मिली,

और ये कारवां अब आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और इसका सबूत है 4 फिल्म फेयर इनकी झोली में आए। ये किसी भी अभिनेत्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। अगली फिल्म थी इनकी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। क्यों नहीं इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाएं, तो आइए सुनते हैं। ये गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में है, रचना अहमद अनीस की और संगीत निर्देशन जावेद अहमद का। इसके पहले जो आपने गीत सुना स्टैंड ऑफ द ईयर, उसे विशाल शेखर और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी थी। गीत के बोल अंकिता दत्त के थे और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। फिलहाल सुनते हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज की कलाकार हैं आलिया भट्ट। कहना न होगा आलिया भट्ट को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा फलक मिला। उसका विस्तार केवल भारत नहीं पूरा विश्व था। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां थीं, विभिन्न प्रकार के खान पान रस्म रीत रिवाज, और उसमें से खुद के चुनाव का पर्याप्त अवसर भी था। पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मी होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन अपने आप को स्थापित करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। एक परिंदे को उड़ने के लिए जब पूरा आसमान हो तो कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो क्या चुने क्या ना चुने। निश्चित रूप से आलिया भट्ट ने वो सब कुछ चुना जो समय की मांग थी। ये और बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो भारतीय संस्कृति को नकारती हैं वो अभी शामिल हुई। वो उनकी मजबूरी हो सकती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने की लालसा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं डार्लिंग फिल्म से, जिसे तुलसी कुमार ने आवाज़ दी है, रचना समीर की है और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आलिया भट्ट की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू और उनकी फिल्मों के गीत। आलिया भट्ट ने रणवीर कपूर को डेट किया और उनसे शादी कर ली, टाइम पास नहीं किया। ये एक बड़ी चीज़ है जिसे युवाओं को ग्रहण करना चाहिए कि जिस किसी को चुन लो तो फिर चुन लो, उसे जीवन साथी बना लो। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी हाईवे, उसने भी काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई आलिया भट्ट को। वो उनकी सफलता के जो प्रतिमान थे या जो सफलता उनको प्राप्त हुई उसमें एक मील का पत्थर था हाईवे। तो क्यों न सुना जाए उस फिल्म का गीत, जिसे सुनिधि चौहान ने आवाज़ दी है, रचना इरशाद कामिल की है और संगीत निर्देशन है AR रहमान का।

तमाम विरोधी चीज़ों का साक्षात्कार और उनमें से मतलब की चीज़ों को चुनना बड़ा कठिन काम होता है। जब आदमी के पास चुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एक बड़ी समस्या होती है कि क्या छोड़ा जाए, क्या ग्रहण किया जाए। ये बड़ी बात है। तो होना ये चाहिए कि जो सर्व कल्याणकारी है, जो समाज के लिए उपयोगी है, जो ठीक है और जिसका ग्रहण किया जाना समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए उचित है, उसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी हमारी है, हम चाहे जैसे जिएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज जबकि ये पद्धति या ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है युवाओं के बीच में, तो कहना ये चाहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसा चुनिए किसी का दिल ना टूटे, कोई आपके फैसले से दुखी ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ना समाज का, ना देश का, ना विश्व का। बेशक ज़िंदगी आपकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने चुनाव से किसी को दुखी करें। आर्यभट्ट के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेटा से जुड़ी, जो पशुओं के हितों का संरक्षण करती है, तो मानवीय मूल्यों की रक्षा के साथ साथ इन्होंने पशुओं पर भी काफ़ी काम किया। वो पशु जिनका घर नहीं होता, जिन्हें आवारा पशु कहते हैं, जैसे कुत्ते हैं या सड़क पर टहलने वाले जानवर। बहरहाल इस आधे घंटे के कार्यक्रम में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता और न बहुत सारे गीत बजाए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवाते हैं ट्रिपल आर फिल्म का गीत, यानी RRR। इसे राग पटेल ने अपनी आवाज़ दी है, वरुण ग्रोवर ने गीत लिखा है और MM करीम ने संगीत दिया है। और यह है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।

आकाशवाणी प्रयागराज से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आलिया भट्ट की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू और उनकी फिल्मों के गीत। प्रोग्राम पेश कर रहा था आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान प्रस्तुति। दीपक राय की थी। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप अपना कुछ सुझाव कुछ विचार देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सुझाव अपना विचार अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बना सकें। और हमारा नंबर है 8004926250। नंबर एक बार फिर से 8004926250। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डार्लिंग, हाईवे और ट्रिपल आर। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत 1942 लव स्टोरी फिल्म से। इसे कुमार सानू ने आवाज़ दी है, रचना जावेद अख्तर की है और संगीत निर्देशन RD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत लव स्टोरी फिल्म से लता मंगेशकर और अमित कुमार की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और सुरों से सजाया है आरडी बर्मन ने।

दिल दिया दर्द लिया। कार्यक्रम का अगला गीत तीसरी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, रचना शकील बदायूनी की है और संगीत निर्देशन है नौशाद का।

अब जी सुनते हैं आज की फिल्म का गीत कुमार सानू और अनुराधा पटवाल की मिली जुड़ी आवाज़ में। रचना समीर की है और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

0: 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत और संगीत OP नैयर का है।
1: दुनिया उसी

मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेज मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात

टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: points to 74,820, while the Nifty added 92 points to 23,476 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुनिए। थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र 18 साल है, ये 10 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। चेहरा गोल, नाक कान कद औसत, रंग गोरा। जिस समय ये विलुप्त हुई, पीली टी शर्ट, काला पाजामा और पैर में चप्पल पहने हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी को दी जा सकती है। आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 9125830876। मोबाइल नंबर एक बार फिर से 9125830876। एक और सूचना सुनिए। थाना करारी, जनपद कौशाम्बी से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा देवी, जो नसरुल्लापुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी की रहने वाली हैं, कहीं लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। रंग गोरा, चेहरा लंबा, बाएं हाथ में फूल का गोदना है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी, ब्लाउज और गले में सोने का लॉकेट पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना करारी, जनपद कौशाम्बी को दी जा सकती है। आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 8960313365। रिपीट, 8960313365। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। चर्चा का विषय है, यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन प्रसारित होगा और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का राग भीम पलासी में ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। सब्र सुनिएगा 8:30 पर बोलते नगमे, 7:31 पर स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की होगी। पंचायत घर कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 6:30। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कृषि और मौन पालन, कृषि अवशेषों का सही प्रबंधन। इस चर्चा के अलावा शंकर लाल पाल और साथियों गाए लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर आज के प्रेरणापुंज श्री वल्लभाचार्य। लोकगीत में आज के कलाकार होंगे शोभा लाल और साथी, प्रियंका चौहान, ब्रिजभान यादव और साथी और प्रसारण समय 2:30। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 पर मेरा हुनर मेरा व्यवसाय क्रम में बुके मेकिंग के बारे में जानकारी के अलावा सेहत ज्ञान क्रम में महिलाएं सुनेंगी मोटा अनाज सेहत के लिए खास। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम महलू फरमाइश प्रसारित होगा 12:30 पर, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। फिल्म संगीत 10:00, 5:00 और चित्रपट संगीत 8:00। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुलाम मुस्तफा खान का राग भीम पलासी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महावीर प्रसाद।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का राग भीम पलासी में ख्याल गायन, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे।

महावीर प्रसाद। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में 12:30 हुए हैं और ये समय है श्रोताओं की फ़ोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मों नगमों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। प्रस्तुति मधु कुमार की है, तो वही सुनते हैं हेलो फरमाइश।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: श्रद्धा बोल रहे हैं। मैम, गाँव का नाम सीतामढ़ी।
0: जी श्रद्धा जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक फिल्म का मैम इसका टाइटल सॉन्ग।
0: टाइटल सॉन्ग इश्क फिल्म का श्रद्धा जी ने फरमाइश की है। तो श्रद्धा जी, आपको गाना सुनवाया जाए या किसी का नाम लेना चाहती हैं आप?
1: नहीं मैम, गाना सुनवा
0: सिर्फ
1: दीजिए।
0: गाना सुनना है तो चलिए अपनी पसंद का सुनिए गाना। फिल्म का नाम है इश्क।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा
0: जी,
1: ग्राम पंचायत पोस्ट रामजालगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। हम टोटली ब्लाइंड हैं दीदी।
0: अरे, तभी आपने इतनी मशक्कत करके हमारा नंबर डायल किया या करवाया।
1: तो हम जो एक लावा बोल मोबाइल रखे हैं, वो नाम बोलता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: नंबर हम नोट किए हैं। तो मतलब वो बोल, जब हम आकाशवाणी एक के नाम से नोट किए हैं, केवल ही नंबर
0: अच्छा
1: नोट किए हैं।
0: अरे

0: अरे तभी आपने इतनी मशक्कत करके हमारा नंबर डायल किया या करवाया।
1: तो हम जो एक लावा बोल मोबाइल रखे हैं, वो नाम बोलता है।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा,
1: नंबर हम नोट किए हैं, तो मतलब वो बोल जब हम आकाशवाणी एक के नाम से नोट किए हैं, केवल वही नंबर।
0: अच्छा,
1: नोट किए हैं।
0: अरे हाँ,
1: तो उसमें जो है वो बोलता है, तो वही बटन दाबते दाबते दाबते दाबते किसी तरह से लग जाता है।
0: देखिए आप कितनी मेहनत से आपने आकाशवाणी प्रयागराज में फोन मिलाया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। तो आप
1: हम बहुत कार्यक्रम सुनते हैं, मतलब
0: अच्छा,
1: जैसे पंचायत घर हुआ, पनघट हुआ, लोकगीत हुआ, लोकगीत
0: जी
1: हमें बहुत अच्छा लगता है आपका,
0: अच्छा
1: जो ढाई
0: अच्छा
1: बजे
0: जी जी
1: से
0: जी
1: 10-5 मिनट पे होता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: हाँ, और हम लगा नहीं पाते जी, मोबाइल ऐप पे हम डाउनलोड कर नहीं सकते,
0: अच्छा,
1: और यहाँ एफएम जो है साफ सुनाई नहीं देता, मतलब
0: अच्छा
1: जौनपुर, पूरे जौनपुर जिला में।
0: अच्छा,
1: तो
0: न्यूज़ ऑन
1: जो
0: AIR ऐप पे आपको बिल्कुल साफ सुनाई पड़ेगा।
1: नहीं, तो हम लगा नहीं सकते ना,
0: आप
1: क्योंकि
0: किसी से
1: हम
0: लगवा लीजिए, किसी से भी लगवा लीजिए,
1: वहाँ मतलब बच्चे स्कूल
0: उसको
1: जाते हैं।
0: डाउनलोड कर लीजिए और लगवा लीजिए, आपको बिल्कुल सब साफ साफ सुनाई पड़ेगा।
1: हम टोटली ब्लाइंड हैं दीदी ना,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: मीडियम एक नहीं सही होगा, सही हो जाएगा ना, अगर सही
0: जी
1: होगा
0: जी
1: तो और
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब आप गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म डाउन का सुनना चाहते हैं, खाई के पान बनारस वाला,
0: तो चलिए आपकी
1: पुरानी
0: हाँ,
1: पुरानी।
0: अमिताभ बच्चन वाली जी, तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं डॉन फिल्म का ये गाना।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, आहा। अरे

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी।
2: मैम रोशनी बोल रहे हैं गाँव कुटिया जिला प्रतापगढ़ से।
1: जी प्रतापगढ़ से रोशनी जी हमारे साथ हैं, तो कौन सा गाना है रोशनी जी?
2: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोल हैं तेरे इश्क में नाचूंगी।
1: आमिर खान के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना रोशनी जी ने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, तो चलिए आपको सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी हंडिया से प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेहरबान फिल्म का अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते।
0: जी सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना है।
1: जी मैम, इसे आपको सुना दे थोड़ा सा?
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुना दीजिए।

0: तो प्रेमचंद जी, आपको गाने का बहुत शौक है क्योंकि आप जब भी फरमाइश करते हैं वो गाना गाकर जरूर सुनाते हैं।
1: हाँ मैम।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं मेहरबान फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से।
0: जी जी, दादनपुर प्रयागराज से विकास जी ने कॉल की है। तो विकास जी, आज कौन सा गीत चुना है आपने?
1: मोहम्मद रफी, आशा भोसले जी की आवाज में, बहुत अच्छा गाना है। जब ये दिल उदास होता है, जाने क्यों आसपास होता है।
0: बड़ा ही सुंदर गीत है और बहुत ही बढ़िया गाया है मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को।
1: जी जी, ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: आप कहाँ कहाँ से ये गीत चुन के ले आते हैं, क्योंकि आपकी फरमाइश अच्छी होती है।
1: जी मैडम, जी जी, मतलब हम लोगों को ऐसा गाना बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी, तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का सीमा फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजा चाहते हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया।

0: है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government, led by C. Joseph Vijay, won the floor test in the

0: एक रिपोर्ट।
1: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान एनटीए ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कायम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़,

और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 1:15 हुए हैं और ये समय है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सूरज की तपिश है पर यादों की फुहार बाकी है, बच्चों के शोर में अनकही एक पुकार बाकी है।
1: ये गर्मी की छुट्टियां सिर्फ आराम का मौका नहीं, ए गृहलक्ष्मियों, तेरे भीतर छुपा एक कलाकार अभी बाकी है।
0: मत देख कि क्या छूट गया इन बरसों की भाग दौड़ में, उठ कि खुद को सवारने का सुनहरा अवसर अभी बाकी है।
1: नमस्कार, मैं हूं गुंजन।
0: और मैं रोशनी बंसल। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। गुंजन, कितनी अच्छी बात ना, खुद को सवारने का अवसर। इन पंक्तियों ने तो सीधे दिल पर दस्तक दी।
1: वाकई में
0: अक्सर गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो लगता है कि बस अब रसोई का काम दुगना होने वाला है, मेहमानों की फहरिस्त बढ़ने वाली है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इतना लंबा समय जो छुट्टियों का होता है वो कितने अवसर भी तो लेकर आता है।
1: वाकई बहुत अच्छी बात कही है तुमने रोशनी, और इसीलिए हम कहते हैं कि इन छुट्टियों को भाई वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ऐसा सीखिए जो आपको एक नई पहचान दे। क्योंकि जब हम नए रास्ते चुनते हैं और नई चीजें सीखते हैं तो जो अंदर का डर होता है ना, वो हो जाता है छू मंतर, और दिल से एक आवाज आती है जो फिल्म निर्जा के इस गीत ने बहुत खूबसूरत तरीके से कही है। तो क्यों ना सुने हम ये गीत।

0: तो गुंजन, इस गीत के जरिए हमने अपनी सखियों को उनके घोंसले से निकालने की तो कोशिश कर दी है, अब बारी है उन्हें ये बताना कि जब आप खुद को संवारने निकले तो क्या कुछ ऐसा उपाय, क्या कुछ कर सकते हैं। तो सीखने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे अगर आपको बचपन में पेंटिंग का शौक रहा हो तो आप उससे शुरू कर लीजिए। आजकल तो लिप्पन आर्ट या मधुबनी पेंटिंग का बहुत ही चलन है। आप इसे घर की दीवारों को भी सजा सकते हैं और एक छोटे से बिजनेस के रूप में भी इसको शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आज के टाइम में डिजिटल साक्षर होना भी जरूरी है। अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल पर जुड़ना, ऑनलाइन नई रेसिपीज सीखना या अपने हुनर को एक सोशल जो मीडिया है उस पर डालना, ये सब हमें स्वावलंबी बनाता है। खुद को अपग्रेड करना ही असली सेल्फ केयर है।
0: और जब आप खुद के लिए वक्त निकालती हैं ना, तो वो जो चेहरे पर मुस्कान आती है उसकी चमक पूरे घर में
1: अलग दिखती है।
0: तो लीजिए, आपकी खुशी को और चमकाने के लिए सुनते हैं बर्फी फिल्म का ये गीत,

0: वाकई में इतनी इतनी खुशियाँ, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीवन का आधार है। अक्सर हम महिलाएं ये सोचती हैं रोशनी कि अब इस उम्र में क्या ही सीखना, अब तो बच्चे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, या मेरे पास तो बाहर जाने का समय ही नहीं है, या मेरे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। भाई देखिए, 24 घंटे का समय हर प्राणी को मिला है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। कोई उसको रील्स देख करके और सो करके ही बिता रहा है, कोई उसी में टाइम मैनेजमेंट करके एक नई चीजें ले रहा है।
1: और गुंजन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मेरा भी जो संस्कार या जो पालन पोषण रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब महिलाएं अपने बारे में सोचने लगती हैं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही होती है कि मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ, मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं हो गई। ये जो हमारी धारणा है ना, इसे आज के समय में निकालना होगा।
0: और अगर जैसे अगर महिलाएं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश भी करें, जब वो अपने पीछे मुड़ के देखती ना, तो कहीं बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं हस्बैंड है, कहीं घर के जो भी बड़े सदस्य हैं, अगर वो थोड़ा सा भी उनकी टाइम टेबल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो वो खुद को पीछे कर लेती हैं
1: और खुद को दोषी, गिल्ट फील करने लग जाती है कि मैंने अपने बारे में कैसे सोच लिया,
0: मैं निकल गई तो ऐसा हो गया, मैं नहीं दे पाई तो बच्चों ने खाना नहीं खाया, तो वो सारी चीजें भी एक क्या बोलते हैं, बैरिकेडिंग सा भी एक बनाती चलती
1: है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, तो ठीक है, आप बनिए स्वार्थी, लेकिन पहल कीजिए अपने लिए, क्योंकि यही फिर आपको ना स्वावलंबी बनाता है, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का मौका देता है। और
0: रही बात जैसे कि बाहर जाने की, जो अभी हमने कहा, तो इसके लिए भाई बाहर जाना भी जरूरी नहीं है, आपके घर में ही इतनी एक जादू की छड़ी है जिससे आप सब कुछ सीख सकते हैं।
1: वो छोटी सी खिड़की जो पूरी दुनिया के लिए खुली है, आपका मोबाइल फोन जिस पर आप यूं ही रील्स और वीडियोस देख देख कर पूरा समय जो है वो गवाते रहते हैं, तो दोपहर की नींद को थोड़ा कम कीजिए और सपनों को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, और इस छुट्टी में थोड़ा बदलाव की छुट्टी के रूप में इसे लीजिए, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं, अपने हुनर को तराशते हैं, तो जिंदगी का हर पल कीमती हो जाता है और फिर दिल खुल कर झूमता है और कहता है ये जो कुछ कहना हम आपको गाने के जरिए जो सुनाना चाहते हैं।

0: समय के समंदर में यूं तो रोज़ कई लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपनी करुणा के अमिट हस्ताक्षर छोड़ जाती हैं।
1: करुणामयी फ्लोरेंस नाइटिंगेल महकते हुए फूलों की दास्तां नहीं है, ये दास्तां है उस जलते हुए दिए की जिसने खुद को पिघलाकर दूसरों की ज़िंदगी में उजाला किया। इंटरनेशनल नर्स डे जो अभी हमने 12 मई को मनाया था, तो उसी संदर्भ में आइए सुनते हैं यह रूपक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। स्वर हैं कीर्ति द्विवेदी और रोशनी बंसल की, प्रस्तुति है नेहा गुप्ता जी की। आइए सुनते हैं ये रूपक।

0: सुबह की धूप जिसकी पोशाक पर ठहर जाती है, रातों की नींद जिसकी आंखों को कभी सताती नहीं, एक संतरी की तरह मुस्तैद जो काफी करीब से देखती है जिंदगी को आकार लेते, और उतने ही करीब से जो दर्ज करती है जीवन की हर हलचल को, वो होती है नर्स।
1: यूं तो खुदगर्जी ज्यादातर इंसानों की फितरत होती है, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं उन्हें दुनिया याद रखती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया अभी तक भुला नहीं पाई है।

0: नर्सिंग के क्षेत्र में 200 साल पहले किया गया उनका काम इस दौर में भी अस्पतालों के सिस्टम का हिस्सा है।
1: ये बात 19वीं सदी की है, साल 1820, तारीख थी 12 मई। इटली के शहर फ्लोरेंस में अच्छे खासे संभ्रांत और धनी परिवार में इस दिन पैदा हुई नाइटिंगेल। उनकी माँ का नाम था फ्रांसिस नाइटिंगेल और पिता का नाम था विलियम शोर नाइटिंगेल।

0: जर्मनी भेज दिया।
1: साल 1853 में फ्लोरेंस को लंदन के हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में नर्सिंग की प्रमुख बनने का मौका मिला, जहां उन्होंने सबसे पहले नर्सों के लिए केयर प्लान बनाया, हाइजीन के महत्व को लोगों को समझाया भी। रोगों के संक्रमण की बात हो या उसको नियंत्रित करने की बात हो, उनके बताए सिद्धांत आज भी यानी 200 साल बाद भी उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे। आइए सुनते हैं एक गृहिणी से कि उनके लिए एक अच्छी नर्स कितनी अहम भूमिका निभाती है, खास तौर पर जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही हो।
2: जब हम बीमार पड़ते हैं तो अजीब सी नकारात्मकता से घिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा, ढेरों चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, मगर वहाँ जाकर जो एक सफ़ेद से एक आउटफिट में एक इमेज निकल कर आती है, वो एक नर्स की होती है। वो जब हमें अटेंड करती हैं या जब हमारा हाल चाल लेती हैं, तो अपने आप ही ऐसा लगता है जैसे आधी बीमारी तो हमने शेयर करके ही अपनी दूर कर ली। मेरा भी अनुभव है कि जब मेरी पहली बच्ची का जन्म हुआ तो शायद संकोचवश में अपनी सासू माँ से या माँ से नहीं कह पाती थी, पर बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरी नर्स ने ही सिखाया। एक नर्स के सहारे हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं कि नर्स है वहाँ, वो देख रेख कर रही होंगी और वो भी मुस्कुरा कर हर बार हमें ढांढस बंधाती हैं। अगर पेशेंट से बात करती हैं थोड़ी रुखाई से, थोड़ी कठोरता से, तो उसमें भी वो अनुशासित होती हैं और एक ढांढस हर बार रहता है कि नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। शायद इसीलिए नर्स को एक बहुत प्यारा सा नाम दिया गया, सिस्टर, क्योंकि इससे अधिक आत्मीयता हम किसी और शब्द में खोज ही नहीं सकते।

0: 1853 की इसी साल में एक वॉर शुरू हुआ था, क्रीमियन वॉर। इस युद्ध में ब्रिटेन के ढेरों सैनिक घायल हुए और कई मौतें हो रही थी। तब फ्लोरेंस को 38 नर्सों और 15 ननों के साथ सैनिकों की देखभाल के लिए भेजा गया। वे जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सैनिकों की हालत बहुत खराब है। चोटों और घावों से ज्यादा आसपास की गंदगी और उससे फैली बीमारी उनकी जान ले रही थी। फ्लोरेंस ने ब्रिटेन की सरकार को इसके बारे में चिट्ठियां लिखना शुरू किया, बैरकों की साफ सफाई पर खासा जोर दिया। वहां जब साफ सफाई रहने लगी तो सैनिकों की मौत के आंकड़े भी तेजी से गिरने लगे। वो जल्दी ठीक होने शुरू हो गए और इसी दौरान उनके नाम से लेडी विद द लैम्प की उपाधि जुड़ गई,
1: क्योंकि रात में वो तड़पते कराहते सैनिकों को देखने के लिए निकलती थी हाथ में लैम्प लेकर, जो उस अंधेरी रात में मरीजों को एक रोशनी के साथ आता हुआ मसीहा सा दिखता था। रोशनी जहां उन्हें जल्द ही ठीक होने की उम्मीद देती थी, वहीं फ्लोरेंस का स्पर्श मात्र ही उन्हें स्वस्थ कर देता था। नर्सिंग को लेकर ही नेहा गुप्ता जी ने बात की नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर रजनी शर्मा से।
2: कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ पेशेंट बहुत जिद्दी होते होंगे, आसानी से दवाइयां नहीं लेते होंगे या आपकी बात नहीं सुनते होंगे, तो ऐसे में आप क्या करती हैं, उनको समझाती कैसे हैं?
3: उन्हें थोड़ी सी काउंसलिंग और उनकी बीमारी के बारे में, जबकि एक्चुअली जब किसी को पता नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट जब उन्हें एग्जैक्टली समझाओ अच्छे से और उन्हें एक सपोर्ट मतलब काउंसलिंग करो ना, तो कन्विंस्ड हो जाते हैं। और थोड़ा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट डेवलप कराना होता है सबसे पहले।
2: कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ठीक है, आप पेशेंट को समझा रही हैं, रोगी को बता रही हैं कि देखिए जी आपको ऐसे करना है, इस तरह से दवाइयाँ लेनी हैं, आपको अपना ध्यान रखना है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने अपना धीरज खोया हो कि अरे मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है और भाई ये समझ नहीं रहा?

0: हैं।
1: एक्चुअली पेशेंस तो नहीं खोया, पेशेंस नहीं खोया, जब जब ये चीज़ें और इनकरेज करती है कि हम मेरे समझाने पर भी क्यों ऐसा, कहाँ पे मेरे डिफिसिट हो रही है कि इनको नहीं आ रही है, तो उनको उन्हीं की तरह उन्हीं के लहजे में और उनको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझाना शुरू किया जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, जो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए।
2: उन दिनों अखबार लेडी विद द लैम्प नाम से पटा रहता था। लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे थे। इतनी ख्याति सुन अपनी फ्लोरेंस कुछ चिंतित हो गई थी, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती थी। क्रीमिया के युद्ध के बाद जब वो ब्रिटेन वापस आईं, तो मिस स्मिथ के फर्जी नाम से रहने लगी।
3: यहाँ आकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे 18,000 सैनिकों में से 16,000 सैनिकों की मौत जंग के जख्मों से नहीं बल्कि गंदगी और संक्रामक बीमारियों से हुई, यानी उन सभी सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी अगर अस्पतालों में साफ सफाई के बेहतर इंतजाम होते तो। फ्लोरेंस की कोशिशें रंग लाईं तो ब्रिटिश फौज में मेडिकल सैनिटरी साइंस यानी साफ सफाई के विज्ञान और सांख्यिकी के विभाग बनाए जाने लगे। 1860 में फ्लोरेंस के नाम पर लंदन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई और इसके बाद नर्सिंग के पेशे को भी सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा।
2: इसी साल फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया। ये नर्सिंग की पढ़ाई के लिए लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक है। रोगियों और दुखियों की सेवा करने वाली फ्लोरेंस खुद भी 1861 में किसी रोग की चपेट में आ गई और इसीलिए वो लगभग 6 सालों तक चल नहीं सकी। ऐसे में भी फ्लोरेंस कमजोर नहीं पड़ी। वे अस्पतालों के डिजाइन और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने की दिशा में काम करती रहीं।
3: फ्लोरेंस ने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। फ्लोरेंस के इस योगदान के लिए सन 1907 में किंग एडवर्ड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली पहली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गेव और टुक एन एक्सक्यूज, मतलब मैं अपनी सफलता का श्रेय इस बात को देती हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी कोई बहाना नहीं बनाया।
2: हर साल भारत के राष्ट्रपति शानदार काम करने वाली नर्सों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजते हैं। उनके जन्मदिन को भी हर साल इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 90 साल की लंबी उम्र और 70 साल की लंबी सेवा के करियर के बाद 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाम की ये नाइटिंगेल यानी बुलबुल दूसरी दुनिया के लिए उड़ गई। आज भी नर्सिंग के क्षेत्र में जुड़ने वाली नई सिस्टर्स सबसे पहले मरीजों की सेवा से जुड़ी द नाइटिंगेल प्लेज लेती हैं, जो फ्लोरेंस के नाम पर ही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सीख और प्रयास 2 सदियों से हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद जरूरी बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे और इन्हीं के जरिए वे हमेशा हमेशा लोगों को याद रहेंगी।
3: फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपनी तमाम उपलब्धियों और यादों के जरिए इस दुनिया को हमेशा एक रोशनी दिखाती रहेंगी, बनकर द लेडी विद द लैम्प।

आप सुन रहे थे रूपक करुणामयी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वाचन स्वर थे कीर्ति द्विवेदी और रोशनी बंसल के, और प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। आइए सुनवाते हैं अब आपको एक गीत।

0: आज हम एक ऐसी राह पर चलने वाले हैं जहां आपकी कल्पना को पंख मिलेंगे और आपकी मेहनत को एक नई पहचान। जब हम अपनी महिला सखियों को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं ना, तो हमारा मकसद सिर्फ उन्हें काम सिखाना नहीं होता, बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाकर उनके भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होता है।
1: तो चलिए बिना देर किए आपको ले चलते हैं आज के खास सेगमेंट में, जो है मेरा हुनर मेरा व्यवसाय, जिसमें हम लेके आए हैं बुकी मेकिंग, एक ऐसा कौशल जो दिखने में भी खूबसूरत है और बिजनेस में मुनाफा भी है।
0: सखियों, जब हम बुके या गुलदस्ते का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ ताज़े फूल ही आते हैं, लेकिन आज हम आपके सोच में थोड़ा बदलाव लाएंगे। अक्सर ताज़े फूलों का जो बुके होता है वो दो दिन में मुरझा जाता है और कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बुके और भी कई तरीके के हो सकते हैं?
1: बिल्कुल, जैसे कि रुमाल के बुके, है ना, सोच में पड़ गई ना। अब देखिए भाई, ये बुके जो होते हैं ये सुंदर रुमालों से आप बना सकते हैं, अलग अलग कलर्स के, और ये साथ ही जब आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो ये यूजफुल भी रहेंगे, है ना, आप उसको डेली यूज में भी कर सकते हैं,
0: यानी कि उपहार के साथ उपयोग भी हो जाएगा। हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन इसके अलावा जैसे मुझे एक आइडिया है कि लेखन सामग्री यानी कि जो हमारे स्टेशनरी मटेरियल होते हैं उसका बुके भी हम बना सकते हैं, जिसमें हम पेन, रंगीन पेंसिल्स, डायरी को सजा कर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा चॉकलेट के बुके, चिप्स के बुके, रबर बैंड जो आजकल स्क्रंचीज आते हैं उन्हें एक तुनके में फंसा के बुके क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई तरीके के बुके हम बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार उसे सजा सकते हैं।
1: सजा सकते
0: लेकिन अपनी सखियों को बता दें कि अगर उन्हें भी इस हमारी इस आइडिया के बाद कुछ नई बात आई हो दिमाग में तो हमसे जरूर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
1: बिल्कुल, और हमें रहेगा इंतज़ार। और जैसे कि अभी रोशनी ने बहुत सारे मटेरियल्स आपको बताए, इसमें और भी हम मटेरियल्स, जैसे मेरे अभी दिमाग में बात करते करते आ रहे हैं, जैसे कि हम अपने पुराने गत्ते ले सकते हैं, रिबन है या कलर्ड पेपर्स हैं, है ना, और इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। और रही बात अगर गिफ्टेड करने की, तो जैसे कन्या पूजन

0: रोशनी करते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: तो क्यों ना हम उन कन्याओं को दे ये गिफ्ट देंगे, तो वो एक अलग सी चीज़ होगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और
1: हाँ
0: हमें तो
1: हाँ
0: दुगना अच्छा लगेगा ही लगेगा। साथ ही इसको आप सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर सकते हैं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठाएं।
1: यानी कि बुके मेकिंग के जरिए आप अपना एक ये जो छोटा सा बिजनेस है उसे बड़ा कर सकती
0: बड़ा कर
1: हैं
0: सकते
1: और
0: हैं।
1: खुशियां बांट सकती हैं। लेकिन जब कुछ नया करने का हमारे अंदर धुन जागता है तो शरीर में भरपूर शक्ति भी होनी चाहिए
0: बिल्कुल।
1: और हर दिन जीने के लिए एक नई तमन्ना भी जागनी चाहिए। लेकिन इस तमन्ना को पूरा करने के लिए और उड़ान भरने के लिए सबसे ज़रूरी हमारी सेहत होती है।
0: बिल्कुल भाई, सेहत जब साथ देती है तभी सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो अब हम सेहत ज्ञान में बात करेंगे उस ईंधन की जो आपके शरीर को दिन भर ऊर्जावान रखेगा। और आज हमारा विषय है मोटा अनाज। मोटा अनाज जो कि सेहत के लिए होता है बहुत ही खास। सखियों, पहले के ज़माने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, इस तरह के जो मोटे अनाज होते थे उन्हें ही वो खाते थे और उसी की वो सलाह भी देते थे। इसीलिए वे हमसे कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त भी रहते थे। और आज दुनिया फिर से इसी की दीवानी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें मिलता है हमें भरपूर पोषण, कैल्शियम, फाइबर का खजाना, जो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है।
1: शुगर और बीपी जैसी बीमारियों में तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ वेट को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। यानी मोटा अनाज आपको मोटा होने से बचाता है।
0: बचाता है।
1: इसका नाम मोटा इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके दाने जो होते हैं वो थोड़े खुरदुरे होते हैं और ठोस होते हैं, जो आपके पाचन में, आपके पेट की साफ सफाई में एक स्क्रबर की तरह काम करता है।
0: जी बिल्कुल। और आज की भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें हम अगर हम बात करें तो रिफाइंड है और मैदा खा करके हम लोग सुस्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने डाइट में थोड़ा सा बदलाव करें और बाजरे की रोटी या रागी को शामिल करें तो इससे हमें कई फायदे मिलेंगे। बता दें आपको कि मोटे अनाज के अंतर्गत आता है बाजरा, है ना।
1: जिसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है तो इसे सर्दियों में खाइए और इसे खिचड़ी या गुड़ बाजरे की टिक्की के रूप में खा सकते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्मी और ऊर्जा देता है।
0: और एक आता है ज्वार, इसकी तासीर भी ठंडी होती है तो इसे गर्मी और बारिश में आप खा सकते हैं। ज्वार की रोटी, उपमा और पोहा, इन रूपों में आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छा कर देता है और ग्लूटेन फ्री भी होता है ये।
1: रागी जो भी एक मिलेट की कैटेगरी में आता है, ये सदाबहार मिलेट होता है, यानी कि आप इसे किसी भी मौसम में खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कंगनी, जिसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, इसको इसके भी बारिश के मौसम में इसको खाते हैं क्योंकि ये भी तासीर जो होती है वो उसकी ठंडी रहती है। कंगनी के खीर खा सकते हैं, इसको पुलाव के रूप में भी आप ले सकते हैं क्यों, और ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: और एक मज़े की बात बताऊँ रोशनी, पहले इसे गरीबों का भोजन कहा जाता था।
1: अच्छा
0: पर बाद में कम मांग और उत्पादन के कारण अब यही महंगा हो चला है। और पिछले कुछ दशकों से हम सिर्फ गेहूं चावल पर ही सिमट के रह गए हैं, पर अब दुनिया इसे सुपर फूड मान रही है। और इसकी बढ़ती जो भी डिमांड है उसकी जो इसमें मौजूद औषधीय गुण हैं उनकी वजह से इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है।
1: तो सखियों, अब आप समझ गई होंगी कि ये मोटे अनाज यानी मिलेट्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं। ज्वार, बाजरा और रागी सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि ये आपके शरीर को जो पावर और स्टैमिना देते हैं उसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी स्टैमिना को बनाए रखने के लिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

तो सखियों, आज का यह सत्र इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद को संवारते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए हुनर, कुछ और सेहत भरी बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह

0: पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ आन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है लोकगीत का। आज के कलाकार हैं शोभालाल यादव, क्षमा कीजिएगा, शोभालाल और साथी प्रियंका चौहान और ब्रिजभान यादव और साथी। शुरुआत कर रहे हैं शोभालाल और साथी से। तो सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं शोभा लाल और साथियों के गाए लोकगीत। अब आइए सुनते हैं इनका गाया गंगा गीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम 5 बजे फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ हम फिर से आपकी सभा में हाजिर होंगे। इस बीच विद भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आखिर क्यों में। गीत के बोल लिखे थे इंदीवर ने, धुन बनाई थी राकेश रोशन ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सुर से, इसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने, धुन बनाई MM करीम ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म कन्यादान का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है नीरज की, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: फिल्म कन्यादान के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या द्विवेदी. दोस्तों, बचपन में जब हम आसमान की तरफ देखते थे ना, तो लोगों से हम सुनते थे तो ये लगता था कि ये जो नीला सा खुला सा आकाश है, हमेशा क्या ऐसे ही रहेगा? सूरज रोज निकलेगा, हवाएं रोज चलेंगी, मौसम रोज बदलेंगे क्या, और प्रकृति अपने संतुलन में हमेशा रहेगी क्या? लेकिन पिछले कुछ सालों में इन सवालों का जवाब हमें धीरे धीरे खुद ही मिलने लगा है. हमने महसूस किया है कि चीजें बदल रही हैं. दोस्तों, गर्मी पहले से ज्यादा तेज हो गई है, धूप पहले से ज्यादा चुभने लगी है, मौसम का समय से गड़बड़ाना ये भी देखने को मिल रहा है, और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं अब केवल अखबारों तक नहीं सीमित रह गई हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं. इन सब के बीच एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत लोग सुनते तो हैं, लेकिन गहराई से इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते. वो है ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर. अब नाम सुनते ही कई लोगों को लगा होगा कि ये सिर्फ एक साइंस का टॉपिक है, क्योंकि इसे हम लोगों ने बुक्स में बहुत बार पढ़ा है. कुछ गैसें हैं जो कुछ केमिकल्स हैं और बस, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं.

लेकिन सच कहे दोस्तों तो ये सीधा हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों धरती के ऊपर वायुमंडल में एक बहुत ही पतली सी परत है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये परत हमारे लिए एक किसी अदृश्य ढाल की तरह काम करती है। सूरज से आने वाली सीधा जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं, उन्हें ये परत रोक लेती है ताकि वो सीधा धरती तक ना पहुंचे और हमें नुकसान ना पहुंचाए। अगर ये परत ना हो तो शायद धरती पर जीवन वैसा संभव ही नहीं है जैसा आज है। यानी हम रोज जिस सुरक्षित धूप का आनंद लेते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ओजोन परत का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचना शुरू कैसे हुआ? तो साथियों, जब दुनिया में तेजी से औद्योगिकीकरण बढ़ा, नई नई मशीनें आई, नई नई टेक्निक्स आई, एयर कंडीशनर आए, रेफ्रिजरेटर आए, स्प्रे आए और कई तरीके की केमिकल उत्पाद आम जनमानस के इस्तेमाल में आने लगे, जब ये रेगुलर यूज में आ गए, तब इंसानों ने सुविधा तो हासिल कर ली लेकिन अनजाने में वातावरण को नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाना शुरू कर दिया। वर्ष 1950 और 60 के दशक में वैज्ञानिकों ने वातावरण में कुछ खास गैसों की मात्रा बढ़ती हुई पाई। इसे नोटिस करते हुए उस समय किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये गैसें आने वाले समय में पूरी पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई और पता चला कि कुछ गैसें जैसे खासकर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ये गैसें फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, पुराने स्प्रे, फोम बनाने वाले उद्योग और कई औद्योगिकी प्रयोग में आते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गैस वातावरण में जाती है तो धीरे धीरे ऊपर जो स्ट्रैटोस्फेयर होता है उस तक पहुंचती है। वहां जाकर सूरज की किरण के संपर्क में आने से ये गैसें टूटती हैं और इनमें मौजूद क्लोरीन ओजोन के अणुओं को नष्ट करने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि एक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को नुकसान पहुंचाता है। यानी नुकसान बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ लेकिन असर बेहद बड़ा निकला। और फिर आया वो समय जिसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। सन 1985 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत ने एक बहुत बड़ा छेद पाया। इसे ओजोन होल भी कहने लगे। ये सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी क्योंकि पहली बार ये देखा गया, इसे साकार रूप से लोग देख पा रहे थे। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि इंसानी गतिविधियों का असर सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है, हमने आसमान तक को इससे प्रभावित कर दिया है। दोस्तों ओजोन क्षरण की बात करते समय एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात ये भी समझनी पड़ती है कि पर्यावरण समस्याएं हमेशा तुरंत नहीं दिखाई देती। कई बार नुकसान बहुत धीरे धीरे शुरू होते हैं और इंसान उसे नॉर्मल बदलाव समझकर नज़रअंदाज कर देता है। जैसे अभी हमारी जो आम जिंदगी में हम देखते हैं गर्मी इतनी तेज़ से बढ़ रही है, या फिर कभी हम देखते हैं आंधी पानी अचानक ही आ जाता है तो हम समझते हैं कि हो सकता है मौसम बदल रहा है इसीलिए ये सब हो रहा हो। नहीं दोस्तों, ये सब प्रकृति का संदेश है कि धीरे धीरे ये जो अव्यवस्थाएं प्रकृति में दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है पर्यावरण में। जैसे आज कहते हैं हम कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये असल में छोटी छोटी जो बातें हैं पर्यावरण के बदलावों की तरफ इशारा कर रही हैं। ओजोन परत का कमज़ोर होना कुछ ऐसा ही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपनी आँखों से आसमान में देखकर तुरंत समझ ले, लेकिन इसका असर हमारी त्वचा, हमारे मौसम, हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन पर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे पहले भी धूप तेज़ होती थी लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहे कि धूप से उनकी स्किन में सनबर्न हो रहा है। पहले घंटों तक धूप में जाकर लोग काम करते थे, खेतों में काम करते थे, गर्मी के सीज़न में खेती भी लगाई जाती थी, कई बार लोगों ने कई घंटों तक इस पर काम करके अपनी फसल लगाई है, लेकिन कभी किसी को सनबर्न जैसी चीज़ें नहीं होती थी, कभी किसी को

रेस से खतरा नहीं होता था। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए घर से ऑफिस आ जा रहे हैं और हमने अपनी स्किन को कवर नहीं किया है, हमने मास्क नहीं पहना है, हमने कवर नहीं लगाया है, तो हमारी स्किन में सनबर्न्स हो जाते हैं, हमारी स्किन में स्पॉट्स पड़ जाते हैं, और वो स्पॉट्स आम नहीं होते, वो धूप से, उसकी किरण से हुए हुए होने वाले नुकसान होते हैं जो स्किन में काफ़ी गहराई से असर किए होते हैं। और शायद इसका जो इलाज है वो इतनी आसानी से भी नहीं होता, क्योंकि वो भी एक तरीके से जला हुआ होता है। और हम देखते हैं टैनिंग कितनी बढ़ती जा रही है, तो ये टैनिंग हम सोचते हैं कि ये आम है, लेकिन ये भी हमारी स्किन को एक तरीके से डिजीज़ की ओर ले जा रही है, वो भी नुकसान ही कर रही है। तो ये सब धीरे धीरे बदलाव हमारे जो शरीर में भी देखने को मिल रहे हैं, पर्यावरण में भी देखने को मिल रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ओजोन परत का क्षरण होना, यानी उसकी लेयर में डिप्लोएशन होना। तो दोस्तों अभी आगे धीरे धीरे हम इस पे और बातें करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ट्रैक, एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है।

तो दोस्तों, गीत के बाद स्वागत है अपने प्रोग्राम में फिर से आपका। और हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर की और उसके क्षरण की। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, हम फिर से आते हैं अपनी चर्चा पर। और मैं आपको बता रही थी कि ओजोन क्षरण जो होता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी गैस होती है, जो उसकी जिम्मेदार होती है उसको क्षरण के लिए, वो होती है CFC, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और सिर्फ वही गैस जिम्मेदार नहीं होती, और भी कई कारण होते हैं जो लगातार इस समस्या को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण के साथ जो उसमें गैसेस थी, एक्स्ट्रा गैसेस थी, जो हार्मफुल गैसेस ऐड हैं, वो भी उसके नुकसान के लिए कारण हैं। और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस, वाहनों का धुआं, जंगलों की कटाई, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और वातावरण में बढ़ते रासायनिक तत्व। आज हम जितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं ना, उतना ही तेजी से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण कभी अचानक से खराब नहीं होता, वो धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। जब तक हम उसके संकेत समझते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और अगर अब हम बात करें इसके प्रभावों की, तो ये केवल तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है। ओजोन परत कमजोर होने की सबसे बड़ा असर ये होता है कि सूरज की जो यूवी रेज होती हैं, वो सीधा हम पर प्रभाव करती हैं, और कई तरीके से प्रभाव करती हैं। इन किरणों पर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जैसे मैं पहले ही बता रही थी कि अभी हम लोगों को उसके बहुत ही माइनर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कि हमें सनबर्न हो रहा है या टैनिंग हो जा रही है, काफी ज्यादा टैनिंग हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें उस खतरे की ओर ले जा रही है, जिसे हम कहते हैं स्किन कैंसर। आंखों में मोतियाबिंद जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी प्रभावित हो सकती है। यानी जो धूप कभी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती थी, डॉक्टर कहता था विटामिन डी लेना जरूरी है, वही धूप जरूरत से ज्यादा और असुरक्षित हो जाए तो खतरा बन जाती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इसका असर खेती पर भी पड़ता है। फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, पौधों की वृद्धि कम हो सकती है, और कई प्राकृतिक प्रक्रिया यहाँ असंतुलित हो सकती हैं। समुद्री जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम आंखों से देख तक नहीं सकते, यूवी किरणों से प्रभावित हो सकते हैं। और क्योंकि वही जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला की शुरुआत में होते हैं, प्राइमरी उस चरण में होते हैं, इसलिए इसका असर पूरी जैव विविधता तक पहुंचता है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि पर्यावरण की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि आज पर्यावरण की समस्या सीधे हमारी जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ गई है। अब हम बात करें तो अब इतनी गर्मी पड़ रही है, तो सब कि सब AC खरीदने में लगे हुए हैं, कूलर खरीदने में लगे हुए हैं, तरह तरीके के उपकरणों को खरीदने में लगे हुए हैं, सबको ठंडा पानी चाहिए, लेकिन कोई ये भी नहीं सोचता कि इसका असर क्या पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीज़ों का, इन उपभोगों का प्रयोग ना करें,

लेकिन इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। जैसे पहले लोग घड़ों का प्रयोग करते थे, घड़ों से भी ठंडा पानी मिलता था और उसे कई तरीके से यूज़ करके उसका पानी और ज़्यादा ठंडा बनाया जा सकता था, लेकिन हम उस अल्टरनेटिव को छोड़कर फ्रिज की ओर बढ़ गए हैं। पहले घरों को ठंडा रखने के लिए उस पे चूने की पोताई की जाती थी और भी कई चीज़ें की जाती थी जिससे घर ठंडा बना रहता था, लेकिन अब हम उसे छोड़कर एसी की ओर बढ़ गए हैं। तो हम खुद उस प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर हम उस मशीनरीज की ओर बढ़ गए हैं जहाँ पे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी कम होती जा रही है। तो दोस्तों, हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और अब अगर हम बात करें कि जो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी जो ख़राब हो रही है, अगर हवा ख़राब होगी, मौसम असंतुलित होगा, तो धरती का जो सुरक्षा कवच है वो कमज़ोर होगा, तो उसका असर सीधा हर इंसान पर पड़ेगा, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि दुनिया ने इस खतरे को समय रहते गंभीरता से लिया है। कई देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की, जिसके तहत ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के इस्तेमाल को कम से कम फैलने से रोकने के लिए उनका फैसला लिया गया है। धीरे धीरे कई देशों ने पुराने CFC आधारित उपकरणों को बंद करना शुरू किया है, नए पर्यावरण अनुकूल तकनीकें को अपनाने की ओर जोर दी जा रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इसी तरह धीरे धीरे छोटी छोटी सावधानी बरतते रहेंगे, तो आने वाले समय में ओजोन परत फिर से काफी हद तक ठीक हो सकती है। यानी अभी भी समय है, पूरी तरीके से वक्त हाथ से नहीं निकला है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी है, हम यूथ्स की है, क्योंकि पर्यावरण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उनसे नहीं बचता है, आदतों से बचता है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बिजली के प्रयोग करें। जब हम देखते हैं कि कमरे का फैन बेवजह चल रहा है, तो उसे ऑफ करने की आदत डालें। घर से बाहर निकलते वक्त जो आपके घर का सारे बल्ब हैं, सारे पंखे हैं और फ्रिज और या फिर कोई ऐसा उपकरण चल रहा है जिसकी वजह से बिजली प्रयोग हो रही है, तो उसे बंद कर दिया करें, ताकि आपका घर तो सेफ रहेगा ही, क्योंकि कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं इसकी वजह से, तो वो भी सेफ रहेगा, साथ के साथ पर्यावरण भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे कदम हमको उठाना होगा ताकि आने वाला कल जो है, जो हमारा कल भविष्य है, जो हमारे यूथ जब हम दूसरे जेनरेशन को हैंड ओवर करेंगे, तो उनके पास भी उपभोग करने के लिए नेचुरल रिसोर्स बचे रहने चाहिए। और ये हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें इतना खूबसूरत घर बना के दिया, हमारे इतनी खूबसूरत धरती बना के दी, खेत खलिहान बना के दिए, जंगल दिए हमें वो अच्छे क्वालिटी में, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली जेनरेशन को कुछ अच्छा हैंड ओवर करें, ना कि उन्हें जेनरेशनल बीमारी दें, ना कि उन्हें जेनरेशनल ट्रॉमा दें, ना ही उन्हें खराब इन्वायरमेंट दें। तो छोटी शुरुआत करें, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो इसी के साथ हमारी चर्चा यहीं समाप्त हुई और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम के गीत दोनों पसंद आ रहे होंगे। इसी प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने जो प्रोग्राम के कुछ खास सेगमेंट्स की ओर। हम हर बार लेकर आते हैं कुछ नया, कुछ खास, कुछ अलग, और इस बार लेकर आए हैं हम एक कहानी। कहानी का शीर्षक है निर्माण घर, और जो हमारे कहानीकार हैं उनका नाम है महेंद्र कुमार कनौजिया। आइए सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी उन्हीं की आवाज़ में।
1: हर रोज की तरह आज भी मैं सूरज के जगने से पहले ही अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे रेत में दौड़ने के लिए पहुंच चुका था। मेरी और सूरज की दोस्ती ऐसी कि दोनों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। पिछले 2 सालों से सूरज ने एक भी बार मुझे नहीं हरा पाया। ये वही सूरज है जिसके बिना इस धरती पर जीवन जीना असंभव सा है। अगर सूरज एक भी सेकंड के लिए किसी दिन देर से उठ जाए तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ जाए। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए मैंने इंसानों से नहीं बल्कि सीधा प्रकृति के देवता यानी सूर्य से ही प्रतिस्पर्धा कर बैठा। और सूर्योदय से पहले ही मैं रेत से दौड़कर घर वापस आ चुका था। मुझे लगता था कि इंसान से प्रतिस्पर्धा करना कुछ न के बराबर है। और फिर हमेशा की तरह आज भी तैयार हुआ और साइकिल लेकर 1500 रुपए वाली नौकरी पर निकल पड़ा। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर वही हार्डवेयर की दुकान है जहां पर मैं नौकरी करता, जिसका नाम था निर्माण घर। 10 से 10 बजे तक की मेरी इस नौकरी में मेरे पूरे परिवार का खाना खर्चा चलता था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार में मैं ही बड़ा था, 3 छोटे भाई और 2 बहन जो मुझसे छोटे थे, और इसके अलावा मेरी माँ। मेरी इस नौकरी में भाई बहन की पढ़ाई और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। परिवार में पिताजी के भाई लोग भी थे, लेकिन कोई कभी भी हमारी मदद नहीं करते थे, बल्कि हमारा मजाक ही उड़ाया करते थे कि क्या कर लोगे भाइयों को पढ़ाकर, और मुझे भी पढ़ाई छोड़ने के लिए बोलते। लेकिन मैं अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहता था और जी तोड़ मेहनत करता था कि कभी तो हमारा भी दिन बदलेगा और एक नए सूरज की रोशनी घर पर पड़ेगी। एक पार्क की बेंच पर बैठा जीतू ये सारी बातें नंदिनी से बता रहा था। नंदिनी भावात्मक तरीके से जीतू की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। हार्डवेयर की दुकान से ही जीतू और नंदिनी की दोस्ती हुई थी। दरअसल नंदिनी निर्माण घर में एक नल की टोटी खरीदने आई थी और उसने 25 रुपए की टोटी ली और 500 का नोट दे दिया। अब जीतू के पास फुटकर तो था नहीं, और दुकान मालिक श्रीवास्तव जी जीतू के भरोसे ही दुकान छोड़कर चले जाते थे। जीतू भी उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा। अब जीतू अपने ग्राहक यानी नंदिनी को टोटी दे दिया और बोला, आप पैसे शाम तक दे देना, अभी मेरे पास पैसे वापस करने के लिए नहीं है। तब नंदिनी ने बोला, आप मुझे जानते तक नहीं और ऐसे ही मुझे दे दोगे? जीतू ने कहा, मैडम, आप देखने में किसी बड़े घर से लग रही हैं और बातों से भी पता चल रहा है आप बहुत सभ्य हैं। आप 25 रुपए के लिए मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती। आप पैसे ज़रूर वापस देंगी।

0: नंदिनी ने कहा, इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर, तब तो जरूर वापस करूंगी मैं। नंदिनी को जीतू की ये बातें दिल को छू ली और नंदिनी ने उसका नाम पूछा और फिर चली गई। नंदिनी जब उस शाम को पैसा नहीं देने आई थी तो जरूर जीतू का भरोसा टूट गया था, लेकिन दूसरे ही दिन नंदिनी उसको पैसा वापस देने आई और 500 पूरे देकर चली गई थी। उसने बोला, तुमने मुझ पर भरोसा किया ना, अब तो तुम्हारे पास वापस करने को पैसे नहीं होंगे। अब मुझे भरोसा है कि तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे, इसलिए मैं 500 जमा करके जाती हूं। ये बात बोलकर नंदिनी चली गई और दोबारा उसने जीतू से वो 500 रुपये नहीं लिए। उसी समय से नंदिनी और जीतू की गहरी दोस्ती हो गई थी। बेंच पर बैठी नंदिनी जीतू की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि जीतू को गले लगा ली और बोली, जीतू, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ, तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मैं कभी गांव नहीं गई हूं ना, आई डोंट नो, बट मैं गांव देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। जीतू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगले शनिचर को छुट्टी रहेगी तो आप आ जाना घर। जीतू एक मेहनती और ईमानदार 28 साल का युवा था जो हमेशा बड़े सपने देखता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, वो साधारण जीवन नहीं जीना चाहता था। अगले शनिवार को नंदिनी अपनी कार से जीतू के घर पहुंची और जीतू के माँ के लिए साड़ी और कुछ पैसे भी लेकर आई थी। आते वक्त उसके भाई और बहन को 500-500 रुपये के नोट भी दिए। ऐसे ही नंदिनी जीतू के घर 2-3 बार आ जा चुकी थी। अब जीतू के गांव वाले नंदिनी को जीतू की मंगेतर समझने लगे थे। नंदिनी और जीतू के अच्छे खासे चर्चे भी होने लगे थे। जीतू के मन में भी नंदिनी के लिए उसके दिल के हर कोने में प्यार उमड़ चुका था। कहते हैं ना कि प्यार ऊंच नीच, धर्म जाति, अमीर गरीब, काला गोरा, ये देखकर नहीं, बल्कि ये तो कभी भी किसी से भी, किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो जाता है। यही तो है प्यार, न उम्र का पड़ाव देखता है और न ही धन न ही दौलत, ये तो बस यूं ही हो जाता है, किसी पल में, किसी भी सेकंड। जीतू को भी यूं ही हो गया था प्यार नंदिनी से। वो कई बार बोलना चाहा पर स्थितियां परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। कुछ दिन बाद नंदिनी जीतू के घर आई और पहले से ज्यादा ही सबको पैसे और सबके लिए कपड़े और जीतू के भाई बहनों के लिए किताबें भी लेकर आई थी। इस बार जीतू के परिवार में खुशी दुगनी हो गई थी। तभी नंदिनी ने कहा, आंटी जी, मैं अब अमेरिका जा रही हूँ, पापा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, और वो खुद अमन यानी मेरे हस्बैंड, वो खुद मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। इतना सुनते ही जीतू के परिवार में जो खुशी थी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जो एक उम्मीद नजर आ रही थी वो अब इस परिवार को नंदिनी के आने पर खत्म होता सा दिख रहा था। लेकिन नंदिनी की इस बात से जीतू की माँ तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नंदिनी के पहनावे और रहन-सहन से पता ही नहीं चला कि वो एक शादीशुदा लड़की है। बड़े लोगों के तौर तरीके ऐसे ही होते हैं। अब गांव की महिला तो बस मांग में सिंदूर और साड़ी पहनने वालों को ही शादीशुदा समझती हैं। जीन्स टॉप पहनने वाली को तो हमेशा कुंवारी लड़की ही समझती थी शायद। नंदिनी भी समझ चुकी थी कि परिवार अब दुखी है। किस बात से दुखी है ये भी उसे शायद पता हो गया था। नंदिनी तो ये भी समझ चुकी थी कि जीतू उसे चाहने लगा है। बस नंदिनी गाड़ी के अंदर बैठी और फिर चली गई।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी। कहानी का शीर्षक था निर्माण घर और कहानीकार थे महेंद्र कुमार कनौजिया। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में, और हमारे कार्यक्रम का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा एक और भी है। उसका नाम है प्रेरणा पुंज, जहां हम बात करते हैं उन व्यक्तित्वों की जिनके जीवन यात्रा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी सोचने और सीखने की ओर दिशा देती है। आज के प्रेरणा पुंज में हम बात कर रहे हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी है, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में शालीनता, धैर्य और संवैधानिक मूल्यों को हमेशा महत्व दिया। दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित माना जाता था। बचपन से ही उनके भीतर पढ़ाई के प्रति गंभीरता और समाज को समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत के हिस्से में प्राप्त हुए और आगे पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा लेने चले गए। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की और फिर भारत लौटकर वकालत शुरू की। लेकिन दोस्तों, उस समय देश

का माहौल सिर्फ करियर बनाने तक सीमित नहीं था, हर तरफ आजादी की आवाज उठ रही थी। देश के युवा अपने भविष्य से पहले देश के भविष्य के बारे में सोच रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद भी इस भावना से अछूते नहीं रहे। धीरे धीरे उनका जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन से बढ़ा और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए। उन्होंने केवल राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का रास्ता भी माना। फखरुद्दीन अली अहमद का व्यक्तित्व बहुत शांत और संतुलित माना जाता है। वे भाषणों में ऊंची आवाज या आक्रामक शैली से ज्यादा गंभीर विचारों और सादगीपूर्ण व्यवहार को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। आज भी जब सार्वजनिक जीवन में शोर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तब ऐसे व्यक्तित्वों को याद करना और भी जरूरी हो जाता है, जिनमें संयम हो, गरिमा हो और पहचान बनाने की योग्यता हो। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े और कृषि, उद्योग, विकास और प्रशासनिक कार्यों में भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उनके काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित माना जाता था। वे मानते थे कि किसी भी पद की असली ताकत अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से होती है। और दोस्तों, वर्ष 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उस विश्वास का प्रतीक था जो देश के व्यक्ति ने उन पर जताया था। तो दोस्तों, ये थे वो महान हमारे राष्ट्रपति, पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका व्यक्तित्व सिर्फ विराट नहीं था, बल्कि धैर्य, संयम और नियम से बंधा हुआ था, जो आज के युवाओं में बहुत जरूरी होता है। तो हम उनसे ये सीख सकते हैं कि धैर्य, विनम्रता कैसे बनाई जाए और जीवन में शांति कैसे रखी जाए। तो दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। समाप्त करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा कल का प्रश्न था कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, और अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता जो लेखक थे वो थे कौटिल्य चाणक्य। तो सही उत्तर देने वाले जो हमारे मित्र हैं उनके नाम हैं शिवम कुमार, विद्याभूषण मिश्रा, कविता पाठक, विजय चौरसिया, रीता सिंह, तान्या, तेजस मल्होत्रा। और आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप हमें कमेंट कर सकते हैं 8004926250 पर, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सही उत्तर देने वाले लोगों के नाम हम शामिल करेंगे अपने कल के कार्यक्रम में युववाणी में। तब तक के लिए मुझे यानी दिव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को

गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, जिसमें श्रोता सुनेंगे शंकर लाल पाल और साथियों के गाए लोकगीत और मिथिलेश कुमार त्रिपाठी से नीति वचन बोलते नगमे। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:31 पर। वाचन स्वर होगा नेह गुप्ता और वंदना राठौर का। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे होगा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे आप सुनेंगे पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर मदन सेन सिंह से की गई बातचीत सुनिए कृषि वानिकी से लाभ कृषि जगत कार्यक्रम में। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा, इसमें आप सुनेंगे पंकज मिश्र की वार्ता आज के जीवन शैली में योग का महत्व। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन आप सुनेंगे सुबह 7:30। पंडित किशन महाराज का तबला वादन होगा दोपहर 12:15 और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन आप सुनेंगे रात 10:30। दिन में 11:30 पर बोलते नगमे, इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में करिश्मा के गाए भजन आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर सुनिएगा सरगम लता के गाए भजन। कामिनी श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र यादव और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 10:05 पर। और फूलचंद्र और साथी, कुमकुम वैश्य, घनश्याम और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद दोपहर 12:30। इसे प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम होगा, जिसमें श्री आलोक की वार्ता सुनवाई जाएगी, बैंक व सरकारी योजनाओं की जानकारी। शाम 5:15 युवा

साथियों का कार्यक्रम होता है युवाणी। इसमें युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो युवा। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें सुनिएगा मेरी खेती मेरी बात। शाम 7:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सुधांशु शुक्ल और वंदना त्रिपाठी का काव्य पाठ। रात 8:30 बजे विविधा कार्यक्रम होगा, इसके अंतर्गत सुनिएगा महादेवी वर्मा की वार्ता अतीत के झरोखे से। रात 9:30 बजे गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशकान समवेत स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: न सिद्धि कृतम यत कापि शक्ति भारतम अवरोधुम न शक्नोति। केंद्रीय गृह केंद्रीय मंत्रिमंडलेन विपणन सत्रस्य षड् विंशत्यधिक द्विसहस्र सप्तविंशत्यधिक द्विसहस्र तम वर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केंद्रीय मंत्रिमंडलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000+ 2,00,000 कोटिरूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् MSP मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मैट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसार माध्यमान् संबोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000 कोटि रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकजघम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरागच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिलभारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमालय हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना।

0: विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टि तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुने, पंचायत घर।

0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम
0: कहो वधू भाई का
1: आज
0: हाल चाल
1: सुलेमान भाई
0: बहु।
1: खेती किसानी में देखा हो ये समय न तो भैया देखा गर्मी चरम पे बा है
0: कह गया
1: भैया देखा तगड़ी धूप होत बा और साथे साथे अपने खेती में जौन उर्द मूंग का खेती भैया देखा भवन हो
0: हाँ
1: ओमन ये ध्यान देवे के बाटे कि पंच भैया हरे सिंचाई करत रहे
0: हाँ हाँ
1: और ना ही तो भैया देखा अगर सूख जाए तो लागत जवन लगी बे ना वह को नुकसान हो जाए
0: कह गया। और
1: तो
0: एक बात और हो देखा आपन जौन है ये मौसम बा बहुते देखा अतलत बितलत है हो कहो कहो देखा जौन है खूब प्रचंड गर्मी पड़त है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: कहूँ कहूँ देखा आंधी है बयार है तूफान है और कहूँ कहूँ देखा ऐसा बरसा हो जात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो किसान भैया बहनी हरिन ये टेम जौन है बहुत ध्यान रखें कि आपन फसल का जौन है कब पानी पिंगल दे कब ध्यान रखें कि कब भैया देखा सिंचाई पताई करत रहें तो ई बातन पर विशेष ध्यान रखें हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखा हो सूर्यमन भाई जब आंधी तूफान का बात किया तो भैया देखा हम आवत रहे ना रास्ता में भैया देखा आंधी हमका मिली
0: हाँ हाँ हो
1: बड़ी
0: दो भाई
1: जोर से भैया देखा हवा चलत रही हो और देखा हम तो कहा पंच भैया अरे अगर हवा बयार चले तेज से न हो
0: हाँ
1: देखा
0: हाँ
1: पेड़ पालों के नीचे न रहे के चाहिए
0: बहुत नीक बात बताया हो काहे कि देखा आपन जैसे पुरान जर्जरित घर रहे हाँ वहाँ के भैया देखा अगल बगल बैठे लायक नहीं आए हो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: साथे साथ जौन पेड़ पौधन वाली बात बताया तो बहुत सजग रहे जरूरत बा देखा कौन से डाल है कौन से टहनी है कौन है देखा पुरान पेड़ जौन है जर्जरित हुई जात है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो वह भी भाई देखा धराशायी हुई सकत है गिर सकत है। तो किसान भैया बहनी हरिन भैया देखा आंधी बयार में बहुत बच बचाए के रहे हो।
1: कही गया हो सुरेमन भाई देखा हम कहा अपन खेती किसानी में
0: हाँ
1: किसान भैया हरे खेती किसानी करत हैं
0: हाँ हाँ
1: मूला हम कहब जवन अपन खेती किसानी से जवन ओकर अवशेष बचत है
0: हाँ
1: जैसे ओकर जड़ है
0: हाँ
1: और तना है भैया तो एका जवन है सड़ाई देवे के चाहिए
0: कह गया
1: और एके सड़ाई से भैया देखा खूब बढ़िया से जवन है खाद बन जात
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: और ओका

0: अपने खेते में जौन है अगर डालत हैं किसान भैया अरे तो उनके फसल जौन है बढ़िया होत है।
1: कहेगा और एक बात और कहा, बहुत से आपन किसान भैया बहनी यहू हैं वो कि भैया देखा जौन आपन ये अवशेष बा फसल के एके का महत्व बा, इसे का फायदा बा। बहुत से भैया बहनी हन जौन है नहीं ध्यान देते हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: फसल में देखा भैया कहूँ आगी लगा दे, हाँ तो इ वजह से अपन फसल का जौन अवशेष है ओके नष्ट कर डावत हैं, तो इसे अपने नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: फसल के भैया देखा अवशेष के रहे से ओके जुताई से और पानी के सिंचाई से सड़े से भैया खाद तैयार होते, अपन फसल की पैदावार बढ़िया होते है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इ वजह से जौन है अपन कृषि अवशेषण का जौन है सही प्रबंधन की जरूरत पड़त है।
0: बिल्कुल सही कही गया भैया। देखा अब धीरे धीरे समय आवत पर धान के, खरीफ का सीजन धीरे भैया देखा आवत पर खेत के जोताई किसान भाई हरे कई के खेत के तैयारी करी हैं,
1: कही गया
0: और साथे साथे भैया देखा जौन अवशेष सड़ावे की बात कहे है न सुरेमन भाई, हम तो कब देखा हमरे पड़ोसी बाटे राम अभिलाष भैया,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: तो भैया देखा ढाइचा के बुआई कई दे हैं हो,
1: हाँ हाँ
0: और हम कहा जे अगड़ा पिछड़ा किसान भैया बहनी हरे रहन वो
1: हाँ
0: भैया देखा ढाइचा के बुआई कह दी, और ओका जौन है खेत में भैया सड़ाई के और
1: हाँ
0: अच्छी खाद हरी खाद बन जाता
1: ये तो
0: है।
1: बहुत नीक बात बताया हो।
0: और साथे साथे कुछ किसान भैया जौन प्रगतिशील हैं चलाक हैं न हो
1: हाँ हाँ
0: देखा वो सब उर्द मूंग के भी बुआई करे हैं
1: हाँ हाँ
0: भैया देखा फली तोड़ के, और जौन ओकर अवशेष बा भैया देखा ओका पानी भरी को हिम जोताई कराई दी
1: ये
0: हैं।
1: तो बहुत देखा दुई दुई लाभ है हो।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: उधर हरी खादो बा, और साथे साथ उधर देखा अपन जौन है उर्द मूंग के जौन दाल बा, हाँ वो आपको तोड़ ली।
0: बिल्कुल ओ भैया। तो भैया देखा जौन वैज्ञानिक भैया हरे बतावत हैं
1: हाँ
0: कि जौन है अपने खेत में हरी खाद के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लावें किसान भैया
1: कह
0: हरे,
1: गया
0: और भैया रासायनिक खाद के कम करें।
1: हाँ
0: तो कहीं न कहीं भैया देखा अपन वैज्ञानिक जौन सोच ब जौन है ओका भैया देखा किसान भैया हरिन के अपनावे के पड़े,
1: हाँ
0: और तब देखा अपने माटी को उर्वरा शक्ति बनी रही हो।
1: कहेगा यही बात तो हम यह अपने पंच भैया बहनी हैं से कहते हो दो भाई कि भैया देखा अपन जौन खेत की जौन माटी बा, ये माटी के उर्वरा शक्ति बढ़िया बनी रहे ज़्यादा से ज़्यादा हुई, तो भैया देखा अपन जौन हरी खाद है, देखो किचुआ वाली खाद है, अपन देखा कंपोस्ट खाद है, तरह तरह के भैया देखा अपने पास उपचार बा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ज़्यादा से ज़्यादा हम तो अपने पंच भैया बहनी हैं इनसे यही कहा बौधो भाई कि ज़्यादा ज़्यादा भैया देखा अपन जौन घर पर तैयार होए वाली खाद बा वह का जौन है उपयोग करें, अपन माटी की गुणवत्ता बढ़िया बनी रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: भैया
1: और साथे साथ जौन है अपन ऐसे तरीक़न का अपनावें कि जौन से माटी की उर्वरा शक्ति बढ़िया बनी रहे और कम ना हो।
0: बिल्कुल भैया देखा इस समय जो उन्हें बहुत बढ़िया बे देखा खेत भी खाली बे,
1: हाँ
0: और अपने माटी के किसान भाई हरे जांच जरूर कराए लिए
1: कही गया
0: आवे वाली फसल से पहले भैया देखा माटी के जांच कराए ली हैं, तो उनका ये जानकारी हुई आई
1: हाँ
0: कि हमारे खेत में कौने पोषक तत्व तो के कमी बे कौने पोषक तत्व तो का भैया देखा अधिकता बे,
1: कही गया
0: तो वो हिसाब से भैया देखा खाद पानी डली हैं तो उनके माटी की उर्वरा शक्ति बनी रहे।
1: हाँ
0: और साथे साथे एक बात और कहा सुरेमन भाई देखा कही के मैंने कि खेती के साथे साथे बारी, तो
1: हाँ
0: भैया खेती के साथे साथे पशुपालन भी किया जा सकत है, मौन पालन है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया कहीं न कहीं खेती से जुड़ा जौन व्यवसाय बा
1: हाँ
0: ओके अगर किसान भाई हरी करते हैं तो उनका चार पैसा के देखा फायदा होता है।
1: कहिएगा
0: तो किसान भाई हरिन के पशुपालन खेती के साथे साथे कह सकत हैं, मौन पालन भी कह सकत हैं जौन है।
1: हाँ और एक बात और हो दो भाई, देखा किसान भैया बहनी ने अपन देखा खेती किसानी के साथ साथ अपन गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है ये तो पालन भैया देखा करते हैं, वह भैया देखा अच्छा चतुर किसान बा कि अपन जौन खेती किसानी में जौन भी देखा अपन फसल के जौन तैयार होते है तो वह का भाई देखो उपयोग की जरूरत पड़त बा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: अपन जब घर का जौन पशु बा वह के देखा भूसा है चारा के रूप में अपनावा जाता है। मुला एक बात हो कि भैया देखा ई जौन मौन पालन वाली बात बताया कि मौन पालन से भैया देखा

0: एक तरह से एक और बढ़त लाभ है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: हाँ, और मौन पालन से अपन देखा, एक तो घर में शुद्ध जौन सहत तैयार हो, और वह भी देखा अपने संतुलित भोजन में भी बहुत बड़ा उपयोगी बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ अगर अपने बढ़त भय घर से तो 4 पैसा की आमदनी हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ओ सुरेमन भाई, बात बतकई हो तरी मुला, आज पंचायती में का सुनो वह पंच भैया हरन के तनी एक ही बतावा।
0: अच्छा अच्छा तो अवधो भैया, देखा अपन किसान भैया बहनी हरन मन में तो जोहत हुई है कि

0: प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी कहे तो यह सुनो आवा जाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: मुला जौन देखा अपन गीत गवनई वाली बात है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो आगे बात बत कही हो भाई करी, तो पहले शंकर लाल पाल और संघातिन की गाई एक विकास गीत बा। तो पहले पंच भैया बहनी हर इनका सुनवा दी हल जाए हो,
1: सुनवा
0: तो
1: दो
0: फिर आगे बात बत कही हो।
1: हाँ
0: हाँ तो सुन।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ भैया, देखा हो विकास गीत के साथे साथे सनेस भी होई गे।
2: हाँ।
1: अब देखा सुरेमन भाई, हम जोन कातरे आज देखा दिन बुधवार है।
2: हाँ।
1: अब भैया देखा, आज नीति वचन के दिन बटे, तो हम तो कहा बाबा प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी के नीति वचन तो हूँ सुना, पंच भैया हरे भी सुने।
2: हाँ हाँ, सुनवा दे।
3: भारतीय संस्कृति में मानव जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए और जीवन को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए महापुरुषों द्वारा समय समय पर जिन नीति वचनों का उल्लेख किया गया है, वे जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। संतों, महात्माओं, कवियों और प्रमुख समाज सुधारकों ने समय समय पर ऐसी बातें कही हैं जिनसे हमारे जीवन में सुधार की संभावना बनी रहती है। ये नीति वचन एक प्रकार से जीवन पद्धति की सूक्तियाँ हैं जो कम शब्दों में गहरी बातें बताती हैं। प्रस्तुत हैं कुछ नीति वचन और उनमें निहित उनके अभिप्राय। सबसे पहले मैं रामचरितमानस से शुरू करता हूँ। रामचरितमानस की एक मूर्ख पात्र है मंथरा। उसने जो बातें कही है वे बहुत बड़ी बात है और उसका अमल करने मात्र से जीवन सारी समस्याओं से बच सकता है। वाक्य है, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। इसका ध्वन्यार्थ यह है कि जब कमल बिना जल के अर्थात अपने मूल जीवन स्रोत से कट जाता है तो पोषण प्रदान करने वाला सूर्य ही उसे नष्ट कर देता है। शिक्षा यह है कि अपनी मूल सांस्कृतिक धारा से अलग हुआ व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। अपने स्वभाव, संस्कार और मनोवृत्ति के विरुद्ध पड़ने वाले कुटिल जनों से मित्रता न करने अर्थात उन्हें साथी या जीवन साथी न बनाने का उपदेश कविवर रहीम दास जी की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। संतोष को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सुख का अक्षय स्रोत बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। रहीम ने भी संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वर्तमान भौतिकवादी युग का मानव अपने दुख से दुखी न होकर पड़ोसी या पराये व्यक्ति के सुख को देखकर दुखी है। ऐसे लोगों को उपदेश देते हुए कबीर दास जी ने लिखा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जियो। दूसरे की उन्नत से जलने वाली ईर्ष्या

वृत्ति मनुष्य को जो तनाव देती है वही समस्त साध्य असाध्य रोगों की जड़ है। कबीर बिहारी ने बाज पक्षी के बहाने इस अन्योक्ति परक दोहा के द्वारा प्रत्येक मानव को यह शिक्षा दी है कि जिस कार्य से किसी स्वार्थ की सिद्धि न हो, कोई पुण्य लाभ न हो, बदले में श्रम की बर्बादी हो, उसे नहीं करना चाहिए। दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी ही न मारी। मानव मात्र को जल कल्याण हेतु आत्म बलिदान का अमर संदेश मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो जो याद हो करे सभी। आधुनिक महाकवि श्री रामवरण त्रिपाठी जी ने निम्न दोहे के माध्यम से उन लोगों के लिए स्वसंस्कृति में जीवित रहने का कड़ा संदेश दिया है जो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अंधराए हुए से अनर्थकारी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। यथा माँ को मम्मी पुकारते, पिता डेड भी साथ, अप संस्कृति के दौर में बच्चे हुए अनाथ। चलचित्र में घुसी हुई अमर्यादित नग्नता पर व्यंग करते हुए उन्होंने मर्यादित जीवन का आह्वान युग दर्शन के ही निम्न दोहे में किया है। क्यों मयूर इठला रहे अपने नंगे नाच, देखोगे चलचित्र तो टूटोगे ज्यों कांच। भावावेश में आकर अनुचित उचित का विचार किए बिना काम करके जीवन भर पश्चाताप करने वालों को गिरधर कवि ने इन शब्दों में सतर्क किया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपना जग में होए हंसाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही बातों का उल्लेख किया है। सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। हमारे आस पास के प्रच्छन्न राक्षसों के लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा है, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाओ ही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जानहु ते निश्चर ये प्राणी। प्रजाजनों को प्रताड़ित करने वाले सत्तासीनों को उन्होंने इन शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने निरंकुश शासकों को चेतावनी देते हुए लिखा है, आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। नारी समाज के अधिकारों को हनन करने वाले पुरुष समाज को उन्होंने इन शब्दों में सावधान किया है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। माता पिता और गुरु अपनी संतति और शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, उनके प्रत्येक आदेश में कल्याण छिपा होता है। इस यथार्थ को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। पिता के प्रत्येक आदेश के पालन का उपदेश उन्होंने इन शब्दों में दिया है, अनुचित उचित विचार तज जो पाले पितु बैन, सो भाजन सब सुजस कै बसै अमरपुर ऐन। विषम परिस्थिति का सामना करते करते मानसिक रूप से टूट चुके लोगों को नैराश्य के विरुद्ध आशावादी जीवन का संदेश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में दिया है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए घाघ कवि ने लिखा है, प्रात काल खटियाते उठ के पियो तुरंत ही पानी, वैद घर में झांक न आवे बात घाघ की मानी। हमारे नीतिकारों ने जीवन को इतना मर्यादित कर दिया है कि यदि उस मर्यादा का पालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या पूर्ण जीवन काल में आ ही नहीं सकती। आगे भी बताया गया है कि भूख से अधिक भोजन करने वालों को अल्पायु होने का भय सदैव बना रहता है। इस बात को व्यक्त करते हुए घाघ कवि ने ही आगे लिखा है
कि

कम खाने वाले और गम खाने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। आयुर्वेद में जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनेक बातें बताई गई हैं। भोजन उनमें से प्रमुख है। आहार के विषय में उचित निर्देश देता हुआ साहित्यकार शास्त्रकार कहता है, पूरे दशने नार्धम तृतीयम उदकेन्तु वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषेत। अभिप्राय है कि उदर का आधा भाग भोजन से भरना चाहिए, 1/3 भाग जल से भरना चाहिए और शेष 1/4 भाग वायु संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यदि व्यक्ति इस नियम के अनुसार अपना आहार सुनिश्चित करे तो उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसे चिकित्सालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, अर्थ और समय की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। जिस समाज के लोग दूसरों का दुख बांटते हैं और अपना सुख बांटते हैं, उनके जीवन में स्वर्गीय सुख और शांति की स्थिति सदैव बनी रहती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख से मानव मात्र को यही संदेश दिया है, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। दुखों का सामना करते करते हीनता की ग्रंथि में बंध चुके मानवों के म्रियमाण जीवन के लिए कामायनी की ही यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है। दुख की पिछली रजनी बीच बिलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। परिस्थिति की मार से हताश लोगों के लिए आचार्य विश्वनाथ पाठक कृत सर्वमंगला काव्य की निम्न पंक्तियां सबल संबल का काम करती हैं। आवय रात भये दिन फिर से, संझा भये सवेरा, कबहु निवास जुरय महलन मा, कबहु पेड़ तर डेरा, कबहु कथरिया मिले पुरुष का, कबहु फूल कैसैया, कबहु दृगन मा काजर सोहे, कबहु निछान असुइया। धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को दुखों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। महिषी महादेवी वर्मा ने इस यथार्थ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जिनका जीवन फूलों की भांति सुकुमार था, उन्हें भी विधाता की क्रूर नियति व्यवस्था में कठिन से कठिन जीवन जीना पड़ा है। उन्होंने लिखा है, तुहिन बिंदुसा मंज सुमनसा, जिनका जीवन था सुकुमार, दिया उन्हें भी क्रूर काल ने पाषाणों का शयनागार। जीवन में छोटी सी उपलब्धि पर कुछ लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आगे और उपलब्धि का प्रयास बंद करके पूर्ण शिथिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रसाद जी ने इन शब्दों में सचेत किया है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। संकट में घिरे हुए लोगों को भगवान पर भरोसा रखकर मुक्ति का प्रयास करने की शिक्षा देते हुए कवियर रहीम दास ने लिखा है, रन बन व्याधि विपत्ति मह, रहिमन मरय न रोय, जे रक्षक जननी जठर सो हरि गयउ की सोय। स्वस्थ सुखी और शांत जीवन के लिए हठधर्मिता का जहर नितांत घातक है। एक अकेला हठधर्मी व्यक्ति पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन जाता है। इसलिए हठवादी प्रवृत्ति से बचने का संदेश देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हठ बस सब संकट सहे, गालो नहुष नरेश। पुनः उन्होंने भगवान शंकर के मुख से सती के बहाने मानव मात्र को यह उपदेश दिया है कि जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पैहौ परिणामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी बहुत सी बातें बताई हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का उल्लेख दिया था कि मैं बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या के लिए प्रयास कर रहा था, तभी गोस्वामी तुलसीदास की यह पंक्ति कानों में पड़ती है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहै रघुवीरा। जीवन से हताश लोगों के लिए यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है। अच्छे और कल्याणकारी कार्यों के लिए हठधर्मिता

0: उन्होंने उचित भी बताया है। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौ लोगों को इतना बड़ा दुश्मन बताया है कि उनसे विरोध न करना चाहिए न तो उनसे मित्रता करनी चाहिए। मारीच के शब्दों में उन्होंने मानव मात्र को शिक्षा दी है कि तब मारीच हृदय अनुमाना नव ही विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी बैद बंद कवि भानस गुनी। पुनः उन्होंने खलों से बैर और प्रीति दोनों न करके उदासीन रहने की शिक्षा इन शब्दों में दी है। कवि कोविद गाँव ही इस नीति खल सन कलहन भल नहीं प्रीति उदासीन नित रही गोसाई खल परिहरी स्वान की नाई। देश रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों के बलिदान को सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में मुक्त कंठ से महिमान्वित करते हुए मानव मात्र के लिए यह संदेश व्यंजित किया गया है कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं की जानी चाहिए। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि हो जाने से मूल्यवती होती है भस्म यथा सोने से। आधुनिक जनवादी कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम जी ने अपने अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बचने की सलाह निम्न पंक्तियों में दी है। भले डांट घर में बीबी की खाना भले काम ऐसे वैसे चलाना भले वन में जाकर धुनी रमाना मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना कचहरी न जाना।
1: हाँ भैया देखा हो नीति वचन प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी के तो हो ही गए हो। अब देखा जोन है जो कहत रहे ना कि शंकर लाल पाल और संघातिन के एक गाँव नई और बाटे हम कहते पंच भैया रेन के सुनवाई दे फिर बात बात कही होत रहे।

0: भैया,
1: हेलो भैया।
0: हाँ देखा हो, शंकरलाल पाल और संघातिन के गौनई तो हो गए।
1: हाँ
0: अब देखा भैया, जौन बात होत रही खेती किसानी के, तो
1: कहिए।
0: भैया देखा ही गर्मी का मौसम चलत बा जौन है,
1: हाँ हाँ
0: भैया देखा जायद का फसल अपने खेत में खड़ी बा,
1: कहिए।
0: और साथे साथे जौन भैया देखा ये मौसम में सब्जी होत है,
1: हाँ
0: देखा सब्जी भी अपन किसान भैया हरे लगाए बाटेन,
1: हाँ
0: चाहे नेनुआ हो, लौकी होए, तरोई होए, भिंडी होए।
1: हाँ हाँ
0: भैया देखा जौन सब्जी के खेती है गर्मी के न, एकरे बदे बहुत सजगता चाहत है।
1: एहो औधो भैया, देखा हमार किसान भैया बहनी हरिन, देखा और भी जौन मौसम होत है, चाहे देखा ठंडी के हो चाहे बरसात के हो, देखा अलमूला ई गर्मी वाली जौन फसल बा, ई साग सब्जियन का बहुते ध्यान रखब जरूरी होत है हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: काहे कि भैया देखा टेम टेम से देखा सिंचाई पताई की जरूरत पड़त है। अगर किसान भैया बहनी हरिन तनिक्यू भी देखा साग सब्जियन में तनिक्यू लापरवाही भय, और अगर टेम से अपन फसल के जो है सिंचाई न भवा तो समझा कि अपन फसल नुकसान हो जात है, और जौन 4 पैसा मिले खोत है वह नुकसान हो जात है।
0: बिल्कुल भैया देखा सही कह गया। एमा समय समय से भैया देखा खेतवई मेड़वई किसान भैया हरे करत रहे,
1: हाँ
0: और अगर भैया देखा उनके तनी सा ये होत है कि अगर जमीन सूखत बा
1: हाँ
0: तो भैया उमन पानी लगाए देवे के चाहिए,
1: हाँ
0: जौने से कि सब्जी जौन है उनके भैया देखा हरी भरी बनी रहे।
1: बनी रहे।
0: अगर हरी भरी फसल बनी रही तो भैया देखा उनका फलत भी उमय आई जौन है,
1: हाँ
0: और अपन किसान भैया हरन की ध्यान देवे के चाहिए न कि भैया देखा ये समय गर्मी में तमाम कीड़ा मकोड़ा भी लागत है
1: हाँ
0: सब्जी में,
1: हाँ
0: तो उहुक भैया देखा ध्यान देवे के चाहिए।

0: किसान भैया के समय से जौन विशेषज्ञ हो भैया देखा अपन कृषि रक्षा इकाई में,
1: हाँ
0: वहाँ भैया जाए के अपन जौन है उनका दिखाई के जौन भी अपन उपचार अगर बतावत हैं तो का किसान भाई हरिन के करे के चाही।
1: ये तो बहुत नीक बात बताया हो भैया। देखा बहुत से ऐसे जौन है कीट पतंगा लाग जात हैं कि आपन साग सब्जियन के जौन फल बा, चाहे देखा नेनुआ होए, चाहे तरोई होए, चाहे देखा भी भैया देखा अपन लौकी बा, कुंडा बा, यह देखा जाते है कि आपन जौन है उ पौधन के कहूँ कहूँ तो पताइन जौन है सूखे लागत है, और कहूँ कहूँ भैया देखा जौन फूल बा वह फूल कट कट के गिर जात हवे। तो जौने वजह से जौन फूल में जौन फल लागे की जरूरत बा वह फल न लागे से नुकसान होत है। तो ये अपन किसान भैया बहनी हरिन अपन कृषि रक्षा इकाई से अपन जौन भी फसल हो साग सब्जी इनके ओका जरूर जाए अपन भैया देखा समस्या बतावें, और साथे साथ उके निजात पावे बदे उनसे राय मशविरा करें और
0: बिल्कुल
1: दवा दर्पण
0: बिल्कुल
1: से छिड़काव करें।
0: बिल्कुल हो सुरेमन भाई, एक बात और कहब।
1: हाँ हाँ
0: देखा साग
1: बताओ।
0: सब्जी के खेती करे के देखा नई नई तकनीक भी वैज्ञानिक भैया हरे बतावत हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: अगर नई नई तकनीक भैया देखा अपनाइए चाहे का लौकी
1: हाँ हाँ
0: हो चाहे नेनुआ होए तोरई होए,
1: हाँ हाँ
0: एक भैया देखा अगर जिसे कि खेत में कुछ गाड़ी के
1: हाँ हाँ
0: बांसों से भैया देखा एका लटकाई के जौन फरत हो,
1: हाँ हाँ
0: अगर लटक के फरत है भैया एका तो ऊपर जमीन से ना एकर रहत तो
1: हाँ
0: भैया देखा एमन कीड़ों मकोड़ों और रोग बीमारी भी कम लागत है।
1: कह गया।
0: तो कुछ किसान भैया हरे हैं जो उनकी नेनुआ भय और लौकी भय एका भैया ऊपर जब फर के लटकत है ना तो
1: हाँ हाँ
0: इसके कीड़ा मकोड़ा से भी बचाव होता है।
1: और साथे साथ जौन भी फल लागत है उके बढ़वारो बढ़िया होत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ तो इस वजह से किसान भैया बहनी है अपन नई नई तकनीकी का जौन है प्रयोग करें, और साथे साथ भैया वैज्ञानिक तरीका से खेती करें अवधू भैया, तो हम समझते कि बढ़िया लाभ मिली और साथे साथ पैदावार भी बढ़िया होई, और एके जौन भी खेती किसानी बा भैया अपने अड़ोस पड़ोस चार पांच भैया बहनी भी सुनी है उन्हों के लाभ मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया हो
1: हाँ
0: देखा जौन है किसान भैया हरन के चाहिए समय समय से अगर भैया देखा ध्यान देते हैं तो चाहे भैया पशुपालन करें और
1: हाँ
0: चाहे साग सब्जी की खेती करत हैं
1: कहिए।
0: तो उम्मा जोर उनका फायदा होए हो।
1: हाँ और एक बात और कहब हो कि भैया देखा खेती किसानी में तरह तरह के भैया देखा अपन जौन है जानवर पशु बा उन्होंने जौन भैया देखा नुकसान करत हुए, तो वह बातन का किसान भैया बहनी हरें ध्यान रखें, रात में निगरानी करें अपन खेत के चारों डाँड में जौन है देखा अपन कटीली तार से भी होए, चाहे भैया देखा मेड़बंदी करें। हाँ तो अपन बच बचाव रखें ताकि अपन फसल की पैदावार बढ़िया बनी रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और साथे साथ भैया देखा अपन खेती किसानी के कार्यक्रम अपन किसान भैया बहनी हरिन सुनिन हमार पंचायती कार्यक्रम, तो अपने किसान भैया बहनी हरिन का यह बतावा चाहित है हो अवधू भाई कि अपन ये कार्यक्रम के प्रतिक्रिया जौन है हमारे देखा व्हाट्सएप नंबर बा अपने कार्यक्रम की ओर से, तो वह को हम बताए दिए पंच भैया बहनी सुनी है और अपन प्रतिक्रिया दे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: नंबर ये बा कि 8004926205 एक बार और बताए दिन जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ तो 8004926205 इन नंबर पर अपन किसान भैया बहनी हरन अपन देखा अपन फोन कैस के अपन प्रतिक्रिया जो उन्हें जानकारी बता सकते हैं, अपन सुझाव भी दे सकते हैं, तो अपने किसान भैया बहनी हरन के भैया देखा जानकारी हमहूँ सबका मिली।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: और कार्यक्रम अभी बढ़िया और सुधार होई उनके मन की बात बतावा जाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये तो रही भैया देखा कार्यक्रम प्रतिक्रिया वाली बात।
0: बिल्कुल भैया हो देखा गर्मी के मौसम बा तो
1: हाँ
0: भैया देखा जो अपन पशु हैं
1: हाँ
0: भैया देखा उन्हों के देख रेख करब हमार तो हर जिम्मेदारी बा,
1: बहुत जरूरी बात हो।
0: तो भैया उनका जौन है समय से जौन है चारा पानी और
1: हाँ
0: साफ पानी अब देवे के चाहिए भैया ये गर्मी के मौसम में,
1: कह गया।
0: और ताज़ा पानी पियाओ भैया ई ना कि भैया नाद में भर दें और खौलत भैया वहीं में लई आई के बांध देते हैं
1: नहीं
0: तो ये लिए भैया जौन है उनका शाम सुबह जौन है और दोपहर में जौन है।

0: भैया देखा ताज़ा पानी पियावें और पशुअन के जौन दुधारू हैं भैया देखा उन्हों देख रेख कर बहुत जरूरी है।
1: कह के और हो सके तो इहो दो भाई भैया देखा अपन हरियर चारा होए हरियरी होए भैया देखा संतुलित जौन बा देखा आहार बा
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: किसान भैया बहनी हरिन अगर अपने पशुअन का भैया देखा खिलाई हैं तो हम समझे थे कि उनके स्वास्थ्य बढ़िया बनी रही और घर मत भैया देखा अपन पशुन के दूध की पैदावारों बढ़िया हुई
0: बिल्कुल
1: चार
0: बिल्कुल
1: पैसा आमदनी मिली और धू भाई ये हो हर एक काम टेम टेम से निक लागत है पंचायती के बीद द होए के टेम भवा हो तो अपने किसान भैया बहनियन से विदा लिया जाए तो पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा के सुनहरी यादों का एल्बम।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: escuchar. मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दोगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहनापूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें।

0: उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, ग्रेड ए धान के लिए 2,000

0: 461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: जी
1: जी,
0: आवाज का ये जो तिलिस्म था
1: जी,
0: जब जब उनकी आवाज सुनाई पड़ती है किसी भी गीत में अगर हम कहें
1: जी,
0: तो ऐसा लगता है कि जो वो पुराना एक दौर था जब हम लोग मोहम्मद रफी साहब को सुन रहे होते थे
1: जी,
0: किशोरदा को सुन रहे होते थे, वो दौर लौट आया है। तो ये आवाज जो शख्सियत है वो भी बड़ी कमाल की है, सोनू निगम, और उनके साथ
1: वो हैं 24 कैरेट सोने जैसी आवाज वाली शहद से मीठी मधुश्री की। और नेहा जी ये देखिए कितना खूबसूरत सा परिदृश्य नजर आ रहा है सामने,
0: जो सूरज की रोशनी खिड़की से खुलकर और छन कर आती है, वो किस तरह से पूरे वातावरण को भव्यता से भर देती है। लगता है पूरा सोना एक जगह पर कहीं इकट्ठा हो गया है और वो सोना पिघल कर ऐश्वर्या राय के चेहरे पे जाकर समा गया है।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब इस तरह के भाव उमड़ते हैं तो शायद जमीन भी ठहरती है और आसमां भी नूर बन के बरसता है, और वो देखना चाहता है कि शायद ये सदियों में कोई ऐसा होता है जो मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत, वो जो कलमा पढ़ रहे होते हैं वो एक ही कलमा है और उसे सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते दोहराते।

0: से हवाओं।
1: नेहा जी
2: जी,
1: कितना खूबसूरत ये जो गीत था कि हम लोग उस गीत के जादू में खो से गए। वो जो सम्मोहन है वो अभी भी बरकरार है।
2: हाँ?
1: और हाँ, एक शख्स
2: जी,
1: उसका चेहरा अभी तक लग रहा है कि नजरों के सामने छा गया है, क्योंकि उसने वो कमाल करके दिखाया है अपनी भावपूर्ण एक्टिंग के जरिए कि जो एक इमेज हम लोगों ने अकबर की सोची थी जब मुगले आजम फिल्म देखी थी
2: जी, जी।
1: जहाँ पे पृथ्वीराज कपूर ने एक इमेज बनाई थी
2: जी,
1: कि वो इस तरह से एक उनका पूरा ऑरा था। लेकिन जब ऋतिक रोशन का नाम सुना था तो ये लगा कि अरे ऋतिक रोशन कैसे इस भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे, लेकिन जब इस फिल्म को देखते हैं हम तब ही लगता कि अरे वाह क्या बात है, क्या अद्भुत रूप और रंग नजर आया है, कितना उन्होंने काम किया होगा इस चरित्र को निभाने के लिए।
2: बहुत सच कह रही हैं आप
1: जी।
2: ये शायद एक्टर्स इसीलिए तो होते हैं,
1: नहीं
2: बिल्कुल किसी भी रूप में ढल जाए।
1: लेकिन अभी तक अगर वो याद आ रहे हैं नेहा जी, तो इसके पीछे भी एक कारण ये है कि जो दूसरा गीत है जो
2: अब मैं समझी
1: बिल्कुल बेकरार है कि हमको भी श्रोताओं के साथ साझा कीजिए, तो वहां पर भी देखिए अलग रूप में ऋतिक रोशन अपने नाराजगी और गुस्से के साथ साथ जो भावपूर्ण शैली होती है उसमें भी वो कमाल का असर छोड़ जाते हैं पर्दे पर, जिसका हमने पिछली बार भी जिक्र किया था। उसी फिल्म का एक गीत लिया था नेहा जी,
2: अग्निपथ,
1: अग्निपथ फिल्म का। तो देखिए यहाँ पर भी उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कोई और गीत चुने,
2: लेकिन ये गीत सुधीर श्रोताओं मैं सच कह रही हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप कैप्टिवेट होते जाएंगे, आपको लगेगा कि आह पहले इस गीत को इस नजरिए से क्यों नहीं देखा और सुना था अच्छा लगेगा।
1: तो सुनते हैं।

0: और वो लय, वो बात किसी के आने से किसी और की दृष्टि पड़ती है। वो कहते हैं कि हल्की सी कहीं कोई एक बूंद पड़ी और वो फूल खिलने सा लगा।
1: जैसे कि प्रकृति पर जब पड़ती है प्रकाश की किरणें तो प्रकृति का हर एक कोना कोना चमक उठता है और उनसे साक्षात्कार हमारा होता है कि कितना कुछ है प्रकृति के भीतर समाहित है। और यही स्थिति पूरी तरह से परिलक्षित हो रही है जो हमारी फिल्म की अभिनेत्री हैं,
0: प्रियंका चोपड़ा
1: जी। हाँ
0: सुधीर श्रोताओं, अजय अतुल का जो संगीत है इस गाने को, मैं कहूँ कि इस तरह से जैसे हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए होते हैं ना, कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, वैसे ही शब्द, संगीत और आवाज़, मतलब ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है इतना मधुर उसको बना रहे हैं, इतना मधुर कि मानो मन करता है कि रुक के बिल्कुल सब काम छोड़कर एक कप चाय हो और ये गीत हो।

अमिताभ भट्टाचार्य मतलब कैसे वो लिखते हैं, एक लड़की की कहानी जो पहले सहमी हुई सी रहती है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं लेकिन वो ख्वाब जो हैं वो बंधे हुए रहते हैं, उसमें सुर तो हैं लेकिन वो लय नहीं है, वो बात नहीं है,

0: नेहा जी
1: जी,
0: जो गीत है, जिस तरह से प्रेम में व्यक्ति कोई डूबा हुआ होता है और जब प्रेम की अभिव्यक्ति इस रूप में दिखाई पड़ती है जैसे कि अभी हम इस गीत को सुन रहे थे, तो जब ये बात होती है ना कि जिंदगी ने पहनी है मुस्कान,
1: क्या बात,
0: कहाँ से कौन सा शब्द लाकर कैसे उस बात को इतना भावपूर्ण अर्थपूर्ण बना देना, ये तो एक लेखक का कमाल होता ही है। और ये बात सच भी होती है कि जब भी कभी जीवन में ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश होता है हमारे भी, तो ऐसा लगता है कि राहें वही होती हैं, सब कुछ आसपास का वातावरण भी वही होता है, हम भी वही होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी जादू की छड़ी ऐसी होती है सामने वाले व्यक्ति के पास कि सब कुछ नया नया सा लगता है, हर एक स्थिति जो होती है, परिस्थिति जो होती है, लगता है कि अरे ये तो अभी हमने पहली बार इसको हम महसूस कर रहे हैं।
1: तभी शायद वंदना जी और दोस्तों प्रेम के भाव को सर्वोपरि रखा गया था इस दुनिया में
0: जी,
1: कि प्रेम में ही ऐसी ताकत है कि जर्रे को पूरा आसमां बना दे है ना। और इसमें एक और बात बड़ी अच्छी सी है सुधीर श्रोताओं, कि वो जो ख्वाब बिल्कुल शांत पड़े थे, जब वो दृष्टि पड़ती है, जब वो साथ मिलता है, कैसे जिंदगी करवट लेने लगती है, पूरा माहौल सिंदूरी हो जाता है। तो उस साथ के लिए बहुत ऑनेस्टी दोनों ने दिखाई इस फिल्म में, है ना, कि ऑनेस्टी कितनी, वफा की बात कितनी जरूरी है, तभी तो शायद ये लम्हा आता है।
0: और नेहा जी, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सारा कुछ तिलिस्म रचा जा रहा है शब्दों के जरिए, संगीत के जरिए, लेकिन एक आवाज जो कि मनोभाव है प्रियंका चोपड़ा के, लेकिन उस मनोभाव को आवाज दे रहे हैं रूप कुमार राठौर।

0: वंदना जी
1: जी,
0: बात करते करते जब हम और आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी धारा सी बह रही है। दोस्तों, सच में ऐसा लगता है हम दोनों को ही कि जिंदगी को कई बार हम लोग नए नजरिए से देखते हैं और महसूस होता है कि अभी तो देखा ही नहीं पूरा। ये जो गजल है साज जबलपुरी जी का ना, जो हम लोगों ने चुना है, बहुत सुंदर। चंदन दास जी बिल्कुल सौंधे से मालूम पड़ते हैं, प्यारे से मालूम पड़ते हैं।
1: ये आवाज जो चंदन दास की है, और जब भी कभी हम अपने आसपास इस आवाज को पाते हैं, चाहे रेडियो के जरिए सुन रहे हो, चाहे कहीं और कहीं से आवाज आती हो, तब ये लगता है कि अरे, ये तो हमारे दिल की ही कोई व्यथा कथा है जिसको वो खोल रहे हैं, यानी चंदन दास आवाज के जरिए। और ये जो बात इस गजल में जो कि अब हम सुनवाने जा रहे हैं आप सबको, दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। और एक कोई याद, कहीं हम उसको बहुत प्यार से छुपा कर रखते हैं कि कहीं कोई देख ना ले, वो याद आपके जहन में चहलकदमी जरूर करेगी। तो चलिए, लेकिन हाँ, खुद को तन्हा बिल्कुल मत समझिएगा, हम लोग साथ हैं आपके।

चंदन दास जी की वो आवाज जो शायद उस अंचल का प्यार और खुशबू और अपनायत लिए हुए है, जब वो अपनी आवाज से कहते हैं कि ये जो आरजू है दिल की, इसको ठुकराइए मत, ये मौसम कह रहा है कि मौसम के हम साथ हो लें। और वो फिर कहते हैं कि मुझको समझाने से अच्छा है पहले खुद संभल जाइए। ये बहुत बड़ी और गहरी और महत्वपूर्ण बात है।

0: सिन्हा जी, अभी तो दो जो गीत सुने थे उन्होंने हमें किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था, जो बड़ी ही खूबसूरत प्रेम भरी दुनिया थी जहां पर सिर्फ मिलन मिलन की बातें थी और खुशनुमा पूरा वातावरण था एक तरह से। लेकिन ये जब हम अभी गजल सुन रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जहां पर कुछ भीगी पुरानी यादें जो होती हैं, बहुत सारे हमारे तन्हाई जुदाई के जो दिन होते हैं वो सब एक के बाद एक बरबस हमारी आंखों के सामने आ गए और मन भीग गया, आंखें भीग रही हैं।
1: लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जीवन चलता रहता है
0: जी,
1: द शो मस्ट गो ऑन।
0: तो चलिए इसी सूत्र को थाम लेते हैं नेहा जी, और अपने श्रोताओं को भी ये वादा करते हैं उनके साथ कि हम आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे,
1: नहीं छोड़ेंगे। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो लिखिए हमारा नंबर
0: 8004926250।
1: तो वंदना जी, दोस्तों से एक वादा करते हैं कि अगली बार आएंगे, मुलाकात होगी और जीवन को और उन नगमों को फिर से देखेंगे, गुनगुनाएंगे, दोहराएंगे और फिर से उस नदी में
0: डूब जाएंगे,
1: संगीत
0: खिलखिलाएंगे। तो चलिए इसी खिलखिलाहटों की छांव तले अब हम लेते हैं अपने दोस्तों से विदा और उनसे कहते हैं नमस्कार।
2: बोलते नगमे,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हेना की कव्वाली, सुरेश वाडिकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद सईद और सतीश की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आक्रमण से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म आंसू बन गए फूल में। गीत के बोल लिखे हैं गोविंद मुनीस ने और संगीत से सजाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म आंसू बन गए फूल का ये युगल गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म सीआईडी का गाना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें, रक्तदान महादान। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। लीजिए सबसे पहले सुनिए अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भक्ति रचना।

इसी गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 26 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2000

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान

0: नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,000.

0: सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज़ अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने मुतला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक्वामी मामलात के साथ साथ खास तौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो UAE पहुंचेंगे, जहां वो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नज़ीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद BJP के कई वज़राए आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को आवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जर मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में BJP की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि आवाम ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि यह कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के आवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने BJP की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक TMC हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल BJP ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की

0: अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मोन्स की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था

0: अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ गई है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से

से तो होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल

0: तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो 1 पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली, चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, उम्र हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है

0: कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और उसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग

0: 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है। सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सके। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो

0: प्रगति है जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते। और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की

शुरुआत करते हैं फिल्म दिल एक मंदिर के गाने से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये प्यारा सा गीत।

हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई निखिल विनय ने।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और सपना अवस्थी को फिल्म जमाना दीवाना में। शब्द रचना है समीर की, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

नया दौर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म पत्थर के सनम से। इसे गाया है मुकेश ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस

0: इनके लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of